0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम कुमारखंडम 12th अध्यायम आरंभम। ओम ब्रह्मोवाच, निहतं तारकं दृष्ट्वा देवा विष्णुपुरोगमाः सुष्ठुवः शाङ्करीं भक्त्या सर्वे न्ये मुदिताननाः। देवावूचुः, नमः कल्याणरूपाय, नमस्ते विश्वमङ्गल विश्वबन्धो, नमस्तेऽस्तु, नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते ते दानवर्य दानववर्य हन्त्रे भानासुरप्राणहराय देव प्रलम्बनाजाय पवित्ररूपिणे, नमो नमः शङ्कर धाततुभ्यं, त्वमेव कर्ता जगतां च भर्ता, त्वमेव हर्ता शुचिज प्रसीद, प्रपञ्चभूतस्तव लोकबिम्बः प्रसीद, शम्भ्वात्वजरीनबन्धो देवरक्षाकरस्वामिन्, रक्षणः सर्वदा प्रभो देवप्राणावनकर प्रसीदकरुणाकर, हत्वा ते तारकं दैत्यं परिवारयुधं विभो, मोचितात् सकला देवा विपद्यः परमेश्वरः। ब्रह्मोवाच एवं सुतकुमारोऽसौ देवैर्विष्णुमुखैः प्रभुः, वरान् ददावभिनवान् सर्वेभ्यः क्रपशो मुने, शैला निरीक्षस्तुवतस्ततस्य गिरिशात्पजः, सुप्रसन्नतर भूत्वा प्रोवाच प्रददद्वरान्। स्कन्दवाच यूयं सर्वे पर्वता हि पूजनीयास्तपस्विभिः, कर्मभिर्ज्ञानभिश्चैव सेव्यमाना भविष्यथ, शम्भोर्विशिष्टरूपाणि लिङ्गरूपाणि चैव हि भविष्यत न सन्देह, पर्वतावदनान् मम। योऽयं मातामहो मेद्य हिमवान् पर्वतोत्तमः, तपस्विना महाभागः, फलदो हि भविष्यति। देवावूचुः, एवं दत्त्वा वरान् हत्वा तारकं चासुराधिपम्, त्वया कृताश्च सुखिनो वयं सर्वे चराचराः, इदानीं खलु सुप्रीत्या कैलासं गिरिशालयं जननीजनकौ द्रष्टुं शिवा शम्भू त्वमर्हसि। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा निखिला देवा विश्वाद्याः प्राप्तशासनाः, कृत्वा महोत्सवं भूरि सकुमारायुर्गिरिं, कुमारे गच्छति विभौ कैलासं शङ्करालयं महामङ्गलमुत्तस्थौ, तैशब्दोपभूवः आरुरोह कुमारोऽसौ विमानं परमर्धिमत्, सर्वतोऽलङ्कृतं रम्यं सर्वोपरि विराजितम्, अहं विष्णुश्च समुदौ सदा चामरधारिणौ, गुहमूर्ध्नि महाप्रीत्या मुने भूव ह्यतन्द्रितौ, इन्द्राद्या अमराः सर्वे कुर्वन्तो गुहसेवनं यथोचितं च दुर्दिक्षु, जग्मुश्च प्रबुदास्तदा शम्भोर्जयं प्रभाषन्तः, प्रापुस्ते शम्भुपर्वतं सानन्दा विविशुस्तत्रोच्चरितो मङ्गलध्वनिः, दृष्ट्वा शिवं शिवां चैव सर्वे विष्णादयो धृतं, प्रणम्य शङ्करं भक्त्या करौ भद्वा विनम्रकाः, कुमारोऽपि विनीतात्मा विमानाद् अवतीर्य च प्रणनाम मुदा शम्भुं शिवां सिंहासनस्थिताम्। अथ दृष्ट्वा कुमारं तं तनयं प्राणवल्लभं, तौ दम्पती शिवौ देवौ मुदा तेति नारद, महाप्रभुः समुत्थाप्य तमुत्सङ्गे न्यवेशयत्, मूर्ध्नि जघ्नौ मुदा स्नेहात् तं पस्पर्शकरेणः, महानन्दभरः शम्भुश्चकार मुखचुम्बनम्। कुमारस्य

आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक साय 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी की 71वां श्लोक। आरूढ़ भक्त

ध्यानाञ्जनेन समवेक्षतम प्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वर नाम मन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्मं ह्यते शिवते कृतार्थः भूदारतामुदवहाद्यतदपेक्षया श्री भूदारयेव किमत सुलभे लवस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य आशापाशक्लेशदुर्वासनादि

0: आशाशाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु। तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं, और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है, एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदा अस्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है, उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते, क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए। इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं। यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता, अनुपयुक्त होता, खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते, हुए कि नहीं बोलो। इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है, ध्यान देना। इसलिए उसके चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहो कि नहीं महाराज, मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से, और क्या वो काम तुम कर लिया करो महाराज, तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है महाराज, हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना भक्तों के दिल को चुरा के ले आना। चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां। और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल। तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो। तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, हैं? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी, हर काम है परमात्मा में, इसलिए बस सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे, और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिल चरत्वम नास्ति मयि देव, तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है, और कदाचित यदि अस्ति राजमौले, हे राजमौले, यदि ये दुर्गुण मेरे में है भी, जड़ता है, कलंकिता है, पशुता है, कुटिल चरत्व है भी, तो मैं तुम्हारे काम में तो आऊंगा आऊंगा। जड़ता है तो माला बनाकर पहन लो, है ना? पशुता है तो सवारी चढ़ लो, तुम्हें पशु ही चाहिए ना सवारी के लिए, तो नंदी चाहिए ना, पशु है कि नहीं नंदी, कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए। चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा, मैं विभूषण ही बनूंगा। कुटिलचारत्व तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिर राजलक्ष्मी। इस श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक यह है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी, शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रु ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता। 900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष, दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। और लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी, तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है, तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है बाबा। रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राज्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। ये अर्जुन तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्य अधिष्ठानम उच्यते।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: ये व्यवस्था है और परमात्मा ने कर रखी है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहां आश्रम में चूहा, मोर, बिल्ली, सांप, नेवला, नेवला होता है ना, एक ही जगह रहते हैं। तो हम बहुत सोचते रहे क्या बात है, तो हमने ध्यान दिया, हमने कहा देखिए कि क्यों नहीं एक दूसरे को पकड़ते। तो महाराज इतने समझदार हैं, सारे के सारे सबने अपनी टाइम सेटिंग कर रखी है। मैं बहुत दिनों से देखा, चेक किया, बिल्ली रात को 12 बजे से 4 बजे तक बैठती है, मोर सुबह 15-20 मोर आते हैं मेरे यहां, सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा मोर रहते हैं। सबने अपने टाइम सेट कर रखे, ऐसा सेट कर रखा है कि एक दूसरे से टकराते ही नहीं। नहीं तो मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, और जो है बिल्ली है वो चूहे को खा जाती है। नवला और सांप की तो कितनी दुश्मनी है। तो हम बहुत आश्चर्य में थे कि एक साथ यहां कैसे रह रहे हैं। तो हमने फिर उनको ध्यान से देखा, तो देखा देखो ये जीव कितने समझदार हैं, इन्होंने भी अपनी टाइम सेटिंग कर रखी है कि भाई तब निकलना है। लेकिन परमात्मा ने संसार की व्यवस्था करने के लिए बिल्ली को चूहा खाने के लिए बनाया, मोर को बिल्ली को सांप खाने के लिए बनाया, एक दूसरे का भक्षक बना दिया ताकि ये व्यवस्था। अच्छा मान लो सांप को कोई भी नहीं खाता, तो सांप किसी को नहीं खाता तो क्या हाल होता। अब तो खैर बहुत आविष्कार हो गया, मार देते, कितना मारते। तो ये व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये प्राणी समय समय पर नहीं ले जाए जिनका, तो फिर कितनी सृष्टि बढ़ जाएगी। ये तो हम सोचते हैं कि परमात्मा बुरा करते हैं हमारी दृष्टि से, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा तो प्रत्येक जीवों का कर्मफल ही देते हैं। जितनी उनकी आयु है उतनी यहां रहते हैं, और आयु पूर्ण हो जाती है तो अपनी यात्रा आगे की। तो करालम महाकाल कालम कृपालुम, कृपालु शब्द है, कृपालम तो तुलसीदास जी की हिंदी है ना, इसलिए लिख दिया। तो महाराज ये महाकाल हैं, आप उज्जैन में जाते हैं ना, कौन से भगवान है वहां? महाकाल है, महाकाल। देखो महाकाल तो भगवान शिव ही हैं और कृपालु कृपा की सागर हैं। कैसी कृपा करते हैं हमने बताया ना आपको, उपमन्यु अपने मामा के यहां गए, अपने मामा के यहां गए तो दूध पी करके आ गए, घर में दूध था नहीं। अब महाराज उनको अच्छा लगा, अब वो मां से कहे कि दूध दो, दूध है नहीं। तो मां ने कहा बेटा दूध तो एक ही दे सकते हैं, वे हैं भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। तुम शिव की आराधना करो, दूध मिल जाएगा। महाराज वो दूध शिव जी की आराधना करने लगे, बड़ा तप किया तो इंद्र देवता प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। अरे जो रुद्र है वो देवता है, वो मेरा शासन में रहता है। उन्होंने कहा इंद्र मैं तो केवल और केवल भगवान शंकर से ही मांगता हूं, तुम तीन लोग का राज्य देना चाहो तो भी मुझे नहीं चाहिए। केवल और केवल भगवान शंकर से ही मांगता हूं मैं, और किसी से मांगता ही नहीं। निष्ठा देखी, निष्ठा देख करके जो इंद्र का रूप धारण करके आए थे भगवान शिव, वो प्रकट हो गए और उपमन्यु को क्षीर सागर, दूध का सागर ही दे दिया। हमें तो पानी का सागर तक नहीं मिलता, और उनको क्या दे दिया? क्षीर सागर, दूध का सागर दे दिया। महाराज बॉम्बे में अगर बारिश ना हो तो क्या हाल हो जाता है? क्या हाल हो जाता है? सारे के सारे मिलकर के बाबुलनाथ में भगवान शिवजी के पास आते हैं, क्या कहते हैं? महाराज करो कृपा, कुछ बरसाओ। अच्छा बॉम्बे में अगर बारिश नहीं होती तो कहां जाते हैं, सच बताओ? शिवजी के पास ही आते हैं ना, है ना? कि जीवन दो, तो जीवन को देने वाले यही हैं, जीवन को देने वाले यही हैं, कृपा के सागर यही हैं, दया के सागर यही। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं महाराज, कितने कृपालु हैं। अगर आपने पत्ता भी चढ़ा दिया इनके ऊपर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते, जो कुछ भी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। एक कथा आती है, नाम तो उनका निर्णप रखा था, बाद में उनका नाम कर्णप हो गया, कर्णप। कर्णप भीलों का सरदार था, शिकार खेलने का काम करता था। उनके पिता के बाद जब बूढ़े हो गए तो उसको लड़के को नियुक्त कर दिया। महाराज शिकार खेलने जाया करते थे रोज, और आप मालूम है शिकार के बाद जो भी कुछ मिलता था घसीट करके ले आते, कच्चे को खा लेते थे, हरिण हो कुछ भी हो। एक दिन वो शिकार खेलने गए तो उसके साथियों ने कहा कि देखो तुम्हारे दादाजी यहां एक मंदिर है वहां उपासना करते थे, आज वहां चले। उसने कहा चलो, धनुष हाथ में ले रखा, तीर बगल में, मरे हुए पशु लटका रखे हैं और बुरा हाल है। उसके हाल भी क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं तो क्या व्याख्या करूं सुबह सुबह। और जैसे जैसे ऊपर चलता गया वो पर्वत पर चोटी पर, वैसे वैसे उसका भाव बदलता गया। जैसे जैसे ऊपर गया उसका भाव बदलता गया, वहां जाकर के देखा तो एक शिवलिंग था। महाराज वो शिवलिंग को देखते ही चिपट गया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता। अब महाराज उसका मन लगा वहां, तो उन्होंने कहा कि मेरे देवता की पूजा करनी चाहिए। अब उसे को पूजा करना नहीं आता, मालूम नहीं क्या करना चाहिए। तो एक ब्राह्मण देवता ने पूजा करके चले गए थे, कमल के फूलों से बढ़िया सजा धजा करके गए थे। उन्होंने क्या किया, वो तो वही था ना, कुछ जानता ही नहीं था। देखो ये जो विद्या है ना, विद्या ये निमित्त से आती है, ये अपने आप नहीं आती है। तो महाराज उसने जुतियां पहन रखी थी पैरों में, उन जुतियों से फूलों को हटा दिया, जंगल के फूल तोड़ लाया वैसे ही। अब जल चढ़ाना है तो नदी में गया और कुल्ला भर के लाया, उसमें डाल दिया क्योंकि उस पात्र था नहीं उसके पास, और थोड़ा बहुत वो भोग जो लगा सकता था, जो खाता था उसी का भोग लगा दिया, अब क्या नाम ले उसका, नहीं। हाँ, दूसरे दिन ब्राह्मण आया, वो शिकार खेलने चला गया, ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण चिल्लाया किसने कर दिया, वो भी आंखों में पानी भर लाया, शिव जी का वो भी पक्का भगत था महाराज। फिर उसने पानी लाया, मंदिर को धोया, साफ किया, स्वच्छ किया, फिर से पूजा की। शिकार खेल के वो कर्णप आ गया, उसने फिर वही पूजा कर दी जो करता था वो। चार पांच दिन हो गए ऐसा चलते चलते, आते ब्राह्मण को पूरा मंदिर अपवित्र, गंदा, बुरा हाल लगे, और कर्णप को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो रात को घर नहीं गया, कहने लगे मेरे देवता अकेले, मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे देवता अकेले हैं। उधर पिता चिंता कर रहे कि भाई आया क्यों नहीं, इधर इसका मन लग गया। एक दिन ब्राह्मण रोने लग गया मंदिर में, कहने लगे प्रभु कौन ये आपकी दुर्दशा करके जाते हैं, उसका आप कुछ शिक्षा क्यों नहीं देते। अब ब्राह्मण भी भक्त तो पक्का था, कच्चा वो भी नहीं था, पक्का भक्त था। तो शिव जी ने कहा रे ब्राह्मण क्या करूं, मेरा भक्त है तो उनके इन कृत्यों को मत देख, तो उसके भावों को देख। तुम ऐसा करना, तुम जब आते हो वो शिकार खेलने चला जाता है, तुम पूजा करके चले जा तो उसके बाद वो आता है, तुम कल इस समय पर आना, फिर उसकी भक्ति को देखना। महाराज दूसरे दिन ब्राह्मण आ गए और दूर से दीवार के पीछे से देखने लगे, तो उसने तो वैसा ही करना था जैसा रोज करता था, लेकिन देखा कि आंख में से खून बह रहा है, शिव जी की आंख में से, वो रोने लग गया, शिवलिंग को वैसे चिपट गया, रोने लग गया, कहने लगे मेरे देवता किसने किया, किसने किया, किसने किया, बुरी तरह रोने लग गया। जड़ी बूटी लाया जो भी जंगल जमे जानते, नहीं ठीक हुआ। उसने कहा क्या करूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बैठे बैठे रोने लगा तो उसे उपाय सूझ गया, कहने लगे अगर मैं अपनी आंख यहां लगा दूं तो हो सकता बंद हो जाए। तो उसने महाराज तीर से अपनी आंख निकाली और अपनी आंख निकाल करके वहां पर लगा दी, खून बंद हो गया, खूब खुश हुआ, नाचा वो, देखा तो दूसरी आंख में खून आ रहा है। अब जब दूसरी आंख में खून देखा तो अब क्या करे, उसने कहा अब तो उपाय मिल गया मुझे, मैं अपनी दूसरी आंख भी लगा दूंगा, लेकिन लगाऊंगा कैसे, मैं निकाल लूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं। तो महाराज जुत्ती तो पहन रखी थी पैर में, उसने आंख के ऊपर जुत्ती का कोना रख दिया। किसकी आंख पर? शिव भगवान की आंख पर जुत्ती का कोना रख दिया, और कोना रख करके देख लिया कि हां बस यहां आंख लगा करके मुझे यहां आंख लगानी है। ऐसे वैसे तो कैसे पता चलेगा आंख कहां है, तो और कोना रख करके सारा देख करके, और फिर वो जैसी अपनी आंख निकाली तो महाराज भगवान शिव प्रकट हो गए और ब्राह्मण को कहा देखो इसकी भक्ति देखी। तो ये है कृपालु, उन्होंने कर्णप का नहीं देखा ये क्या कर रहा है, उन्होंने नहीं देखा ये मेरी पूजा किस तरह से कर रहा है, अपना उच्छिष्ट जल मेरे ऊपर डाल रहा है, अरे जो नहीं अभक्ष भक्षण मेरे को खिला रहा है, नहीं देखा उसने, उसने तो उसकी भक्ति देखी, और भक्ति देख करके वो प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान शंकर को कृपालु कहा है। किसी ने कहा भाई ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन हो जाते हैं, कौन होते हैं? शिव जी। शिव जी से जल्दी प्रसन्न कोई होने वाला नहीं है, समय समय उनके पास। विष्णु तो क्षीर सागर में महाराज राधा जी राजाधिराज की तरह से रहते हैं, शिव जी ने कहा तुम रहो राजा की तरह, हम तो अपने पब्लिक में रहेंगे, जाकर के मशान शमशान में बैठ गए, आओ सब मिल लो, सब मिल लो। और महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, जिसको जल्दी वरदान चाहिए और जिसको जल्दी काम कराना चाहिए वो शिव जी की आराधना करते हैं और सब कुछ दे देते हैं, कुछ रखते नहीं अपने पास। सॉरी, नहीं नहीं हमारा गला रात को खराब हो गया, कोई बात नहीं, ये तो अब साल भर कथा ही करते रहते, कभी तो खराब होना ही इसको भी, मशीन है ना, मशीन है ये भी, तो ज्यादा प्रयोग में लेंगे तो कुछ तो होगा इसका। तो जिसको जल्दी प्रसन्नता चाहिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसे महाराज ये कृपालु हैं, कृपालु कृपा के सागर हैं, ये इतने कृपालु हैं, ये सब कुछ दान दे देते हैं, सर्वस्व दे देते हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास। क्यों? क्योंकि इनको कुछ चाहिए ही नहीं। सुरास्ताम ताम्रिद्धिम ददति तु भवद्भ्रो प्रणिहिताम नहि स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। महाराज कहते हैं कि शिवजी के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बार अपनी कृपा कटाक्ष करते तो सारे देवताओं के पास धन संपत्ति का अंबार लग जाता है। सुरास्ताम ताम्रिद्धिम दधति तु भवद्भ्रो प्रणिहिताम। लेकिन महाराज आप तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। लेकिन जो स्वात्मा राम है, अपने ही आनंद में रहते हैं, इस संसार की माया उसको भ्रमित नहीं कर सकती, इसलिए भगवान शिव कुछ रखते ही नहीं। उन्हें मालूम ये है क्या, क्योंकि वो तो मायावी है ना, माया के सारे रहस्य को जानते हैं। लेकिन इंद्र तो घबरा जाता है, कहीं किसी ने सो अश्वमेध यज्ञ कर लिए और मेरा पद छिन गया तो क्या होगा। इतनी कृपा करते हैं ये, देते हैं तो देने का अंत नहीं, देने का अंत नहीं है इनका। कुबेर को एक बार दिया तो कुबेर धनाधिपति हो गए, धनाधिपति। अच्छा देते सबको हैं, यही एक देवता ऐसे हैं जो सब सबको देते हैं। देवताओं को इन्होंने दिया, दैत्यों को, राक्षसों को इन्होंने दिया, अरे रावण को संपत्ति किसने दी, बाण को संपत्ति किसने दी, ऐसे हजारों राक्षस हैं, हजारों दैत्य हैं, सारे देवता हैं। जब जब कुछ चाहिए तब तक इनके पास आ जाते, महाराज हमें दो। शिवजी कहते हैं कि ले जाओ ले जाओ। वही रावण जब शिव की आराधना करके धन और ऐश्वर्य से भरपूर हो गया और जब अभिमान आया तो भगवान शिव ने उसके अभिमान को भी रखा नहीं, उसको भी चकनाचूर कर दिया। बाणासुर ने कहा कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं, युद्ध करो। उन्होंने कहा मैं तो तेरी रक्षा कर रहा हूं, मैं क्या युद्ध करूंगा, हमें भेज देता हूं, मैं व्यवस्था कर देता हूं योद्धा की तेरे लिए। और महाराज शिव जी ने फिर बाणासुर के लिए योद्धा की व्यवस्था की, लेकिन बाणासुर का अभिमान चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये शिव जी की ही कृपा है। जहां भक्ति से देते हैं वहां पर अगर अभिमान आ जाता है तो वो छीन भी लेते हैं। तो करालम महाकाल कलकालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतोहम। गुणागार गुणों के आगार हैं, आगार माने खान, खजाने, सकल गुण निधान है, सकल गुण निधान। महाराज कौन से गुण, ये ब्रह्मा, ये गुण कौन से भगवान में, देखो दया है, कृपा है, स्नेह है, प्रेम है, औदार्य है, ये सारे गुण है ना। ये भगवान में गुण क्यों बताए, ताकि भगवान में इन गुणों का आधान करके ये गुण हम अपने अंदर धारण करें। जैसे भगवान ने सूर्य सबके लिए बना दिया, अच्छे हो या बुरे कैसे भी हो सूर्य का प्रकाश सभी को मिलता है। ऐसे ही हमारा जीवन हो जाए, हमारे जीवन से हर एक व्यक्ति को प्रकाश मिले। प्रेम के अनंत सागर हैं वो, करुणा के अनंत सागर हैं वो गुण हम अपने अंदर धारण करें। हमारे अंदर प्रेम हो, करुणा हो, स्नेह हो, दया हो, औदार्य है, उदारता। तो जितने भी गुण हैं, वो भगवान शिव में निवास करते हैं। और शिक्षा क्या है भगवान की? एक बार विष्णु जी चले गए, कहने लगे हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा क्या है बताओ तो। रहिमन लक्ष्मी चंचला, रहिमन, कहने लगे एक पत्नी है वो भी मेरे यहां नहीं रहती, कभी किसी के यहां चली जाती है तो। रहिमन लक्ष्मी चंचला, यह तो थिर ना हो, पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचल हो। शिव जी कहने लगे इतनी बात से घबरा गए, अरे मेरे को देखो, मेरे को, मैं बैठा हूं आनंद से, अब मेरे चारों तरफ देखो मेरा परिवार, परिवार कैसा महाराज, देखो उनका परिवार बड़ा विचित्र है। भगवान शिव का वाहन है वृषभ, बैल है ना, और उनकी पत्नी का वाहन सिंह, दोनों एक साथ ही रहते हैं। रह सकते हैं क्या वहां? रह रहे हैं। अच्छा, उनके बड़े लड़के का वाहन है मयूर, क्या वाहन है? और उनके गले में क्या है? मयूर की सर्प की दोस्ती है क्या? आप तो मालूम नहीं, मोर सांप को खा जाता है। मोर हमने देखा, पकड़ जाएगा, झटका देगा, फिर छोड़ेगा, फिर ऊपर ले जाएगा पकड़ करके और खा जाता है वो। छोटे लड़के का वाहन क्या है? सांप की चूहे की दोस्ती है क्या? गले में क्या है? विष। गले में क्या है? ऊपर चंद्रमा अमृत, दोनों विरोधी है ना, दोनों विरोधी हैं। जितना भी सारा का सारा विरोध है, वो सारा का सारा मैंने रखा हुआ अपने पास, और फिर भी मैं समाधि में रहता हूं, आनंद से रहता हूं। कुछ तो मेरे से शिक्षा ले लो, परिवार कैसे चलता है। सारे विरोधी वहां पर हैं, लेकिन परम शांत तो शिव ही है। सांप भी है, चूहा भी है, शेर भी है, बैल भी है, और महाराज अमृत भी है और विष भी है, अमृत भी है और विष भी है, सब कुछ है वहां पर। लेकिन आपस में लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, सब रह रहे हैं वहीं पर, रह रहे हैं, झगड़ा नहीं है। यह भगवान शिव जो है ना, इस तरह से गुणों के आगार हैं। आपने सुना है, खैर हमने तो अपने आश्रम में बताया ना, उन्होंने तो अपने टाइम सेट कर रखा है। अगर टाइम सेटिंग ना हो तो बिल्ली चूहा खाने के लिए आती, पकड़ ले जाती है। लेकिन सभी ने अपनी टाइमिंग सेट कर रखी है जिस समय जो आता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि किसी महात्मा के यहां हिंसक प्राणी अपनी हिंसाओं का त्याग करके वहीं रहते हैं। एक महात्मा की विशेषता। हम हरिद्वार से थोड़ा सा आगे एक जंगल में थे, अब तो वहां नेशनल, राजाजी नेशनल पार्क बना दिया, तो वहां हाथी आते थे, जंगली हाथी बड़े खूंखार भयंकर होते हैं। और गुफा थी, हम रहते थे, हाथी आते थे, पानी पीते थे, चले जाते थे। एक दिन पता नहीं हम हाथी को क्या सूझा महाराज, वो एक महात्मा की झोपड़ी के पास, कभी हाथी ने कुछ नहीं कहा, महात्मा की झोपड़ी के पास गए, महात्मा तो निकल गया, लेकिन उस हाथी ने उस झोपड़ी को छोड़ा नहीं। अब कोई होगा, कोई कारण होगा, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। जंगली हाथी, और ये हाथी इतने खतरनाक होते हैं अगर एक आवाज लगा दे तो सारे हाथी वहीं पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक महात्माओं के पास हिंसक पशु हिंसा का त्याग कर सकते हैं तो ये तो भगवान शिव हैं। गुणागार, गुणों के ये आगार हैं। और क्या है ये? संसार पारम। देखो संसार पारम के दो अर्थ हैं, है ना? एक अर्थ तो है जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, संसार का कारण वही है, संसार उन्हीं में रह रहा है फिर भी वो संसार से परे हैं। नमः संसार रूपाय निसंसाराय ते नमः। आप ही संसार रूप हैं लेकिन निसंसार भी आप ही हैं। और दूसरा अर्थ है जिनका भजन करके हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। दोनों अर्थ है यहां पर। संसार पारम का अर्थ है कि संसार से परे आप हैं, संसार से आप परे हैं, संसार से परे हैं, और संसार में रह करके, संसार में रह करके यदि हम आपका भजन करते हैं तो हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। भगवान शिव ने संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की, और रचना करके इसी में छिप गए। अब सारे लोग ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन मिल जाते हैं जो अपने अंदर

0: तो जो संसार में रहते हुए संसार से परे है, संसार इसके एक अंश में स्थित है, बाह्याभ्यंतर संसार के भीतर भी और बाहर भी हैं, संसार के अंदर भी और संसार से परे भी हैं, और जिसका भजन करने से हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो गुणागार संसार पारम न तो हम, ऐसे जो शिव जी हैं, ऐसे जो शिव जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे जो शिव जी जो निराकार स्वरूप हैं, जो एकमात्र ओंकार हैं, ओम के भी जो मूल हैं, जिनसे शब्द ध्वनि निकली ओम की, ऐसे जो भगवान शिव हैं, जो मन वाणी और इंद्रियों से परे हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और फिर बहुत सुंदर भगवान शिव, शिव के स्वरूप का वर्णन है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: आपके हाथ में घड़ा है अगर, तो घड़ा जो मिट्टी का बना हुआ है, अगर उसमें से मिट्टी निकाल लेंगे तो घड़ा नाम की कोई चीज है? और सचमुच में दिख रहा है आपको घड़ा, पर घड़ा है वहां की मिट्टी है? मिट्टी है। घड़ा नाम और रूप है, और घड़ा मिट्टी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। पहले मिट्टी है, बाद में मिट्टी है, बीच में घड़ा होने पर भी कौन है? मिट्टी है। इस सृष्टि के पहले जगत नहीं था तब भी ब्रह्म तत्व है, जब सृष्टि है तब भी ब्रह्म है, और सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी ब्रह्म है। इसलिए जगत क्या है? मिट्टी में दिखने वाले घड़ा की तरह मिथ्या है। घड़ा मिथ्या क्यों है? घटा क्योंकि, एक शब्द याद रखना, मिथ्या शब्द के लिए, मिथ्या की व्याख्या, कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम। जो अपने कारण से पृथक नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, मैं हूं जगत है, अहम अस्मि जगत अस्ति। मैं जान रहा हूं, जगत भी हमको पहचान में आ रहा है। अहम भाति जगत अपि भाति। जगत न अस्ति, अहम जगत नहीं रहेगा, अगली क्षण नहीं रहेगा, ऐसा मैं अगली क्षण रहूंगा कि नहीं? मेरा कभी अभाव नहीं है, पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। इसलिए अहम अस्मि अस्मि अस्मि, जगत अस्ति अभी क्या है? नास्ति। अहम भामि, मैं जान रहा हूं कि हूं, और हूं इसलिए जान रहा हूं। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपि। बाल्य अवस्था, जाग्रत अवस्था, सब अवस्था में अहम आत्मा का कभी भी अभाव नहीं है। मन का अभाव हो जाता है, मन बदल जाता है, इंद्रियां बदल जाती है। ये क्या, इंद्रियां बदल गई कि नहीं? पढ़ते पढ़ते पुस्तक दूर जाती है, क्या है, आंख बदल गई कि नहीं?

और वेदांत में आते हैं, ये क्या हो गया, कान गया। कभी कभी दो स्वामी दिखते हैं, हो जाता है कि नहीं, ये सब बदलता है। मैं बदलता नहीं हूं, और बदलने की चीज को जानने के लिए जो देखने वाला है वो अचल ही होना चाहिए। ट्रेन चल रही है किसको मालूम पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है उसको मालूम पड़ता है। तो अहम अस्मि, अहम भामि, जगत अस्ति अभी नास्ति, अभी भाति नहीं है, इंद्रिय अस्ति सोने पे नहीं है, शरीर छूटने के बाद नहीं है, मन अभी है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये सब आता है जाता है, आत्मा न आता है न जाता है। अभी ये जगत आत्मा पे निर्भर है कि आत्मा जगत पे निर्भर है? जगत आत्मा पे निर्भर है। अगर मैं नहीं होता तो जगत का ज्ञान किसको होता, मैं नहीं होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसको दिखती, अगर मैं नहीं होता तो शरीर का स्वास्थ्य कैसे मालूम पड़ता? आप लोगों को मालूम है डॉक्टर किसको पूछते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, किसको पूछेंगे? पेशेंट को। और पेशेंट कहेंगे अमेरिकन होगा, हाउ आर यू, इनकी पूरी नहीं, अच्छा ना बुराई से बताएंगे, ठीक नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। शरीर की स्थिति हमको मालूम है, मन की स्थिति मालूम है, और सब कुछ क्या है, बाहर की वेदर की तरह बदलता हुआ है। फिर से आइए, कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम। मैंने ये जो कपड़ा पहना हुआ है वो सचमुच में क्या है, धागा ही है, रुई है, रुई के बिना कपड़ा नहीं हो सकता है, तो कपड़ा मिथ्या है, क्योंकि रुई से धागा से उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम, ये जगत जो दिख रहा है, भास रहा है, बदल रहा है, किसी ने कहा जगत सत्यम वाय दृश्यत्वात्, किसी ने कहा जगत सत्य है क्यों दिख रहा है, हमने कहा जगत मिथ्या दृश्यत्वात्, वही लॉजिक। देखो एक बात है, बलवान आदमी के सामने अगर कमजोर आदमी लट्ठा लेके जाएगा, लकड़ी लेके जाएगा, डंडा लेके जाएगा, तो क्या होगा, वो बलवान आदमी उसी की लकड़ी लेके किसको पिटेगा, उसी को पिटेगा। ये लोग हमारे सामने लॉजिक लेके आते हैं, जगत सत्यम दृश्यत्वात्, हम लोग कहते जगत मिथ्या क्यों, दृश्यत्वात्, कैसे, स्वप्नवत है, स्वप्न भी दिखता है पर मिथ्या है, जगत भी दिखता है मिथ्या है, जो दिखे वो मिथ्या। बौद्धों ने आके कह दिया जगत सत्यम व्यावहारिकत्वात्, उन्होंने कहा जो उपयोगी होता है वो सत्य होता है, हमने कहा कि नो, जो व्यवहार योग्य होता है, इसको संस्कृत में शब्द है अर्थ क्रियाकारित्वम, उपयोगिता है, घड़ा उपयोगी है इसलिए सत्य है। हम कहते हैं जो उपयोगी होता है वही मिथ्या है, वही लॉजिक, वही डंडा उसको मारते हैं। तो मिथ्या का अर्थ होता है वो सत्य के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। आप चलते हैं धूप में, आपकी परछाई पड़ती है, परछाई क्या है, मिथ्या, आप क्या है, सत्य, परछाई है आप है, परछाई नहीं है आप नहीं है, ठीक है। बोल भाई, तो मैं जानना चाहता हूं, सोए हैं, जागते हैं, क्या करते हैं सुबह सुबह, मेरा प्रतिबिंब भी दिखे मैं हूं, प्रतिबिंब न दिखे अरे मैं कहां चला गया, ये नहीं मैं हूं। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहम अप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम्
सच्चिदानंद लक्षणम्। अहम आत्मा अस्मि अहमस्मि सदा भामी, कभी अपना भान स्वरूप आत्मा का अभाव होता नहीं। आई एम कॉन्शियसनेस, ईसनेस ऑफ कॉन्शियसनेस डजंट कम टू एंड। अहम अस्मि सदा भामी। और सबसे ज्यादा प्रिय दुनिया आपको कौन है, सच बोलिए। स्वामी जी बेटे का बेटा, हा हा हा, वो मेरे जान से भी प्यारा है। नहीं, आप ही प्यारे हैं। वो आपको प्यारा क्यों लगता है, क्योंकि आपको वो अभी सुख देता है, आपकी बात मानता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बेटा आपकी बात नहीं मानता है, कौन मानता है, पौत्र मानता है। वो भी जब कहेंगे व्हाट ग्रैंडपा डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, हो गया पूरा, वो दिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ही लिसन्स टू यू और वो आपको ठीक तरह से पहचानता नहीं है। इसलिए वो जब पहचानेगा आप क्या है तो वो भी भागेगा आपसे। तो देयरफॉर यू लव हिम कंडीशनल, और व्हाई डू यू लव हिम, बिकॉज ही मेक्स मी हैप्पी, देयरफॉर आई वांट टू बी हैप्पी। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबसे ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है। एक दिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि चार बाबा जी बैठे, बड़े बड़े दाढ़ी है और सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, तो सबसे पहले किसकी बुझाओगे, किसकी बुझाओगे, अपनी। आप लोग कह रहे, मैंने कॉल ड्रेस्टिक एग्जाम्पल, ओके महाराज। आत्मा का, आत्मा के प्रति जो प्रेम है, न कदाचित अहम अप्रिय है। अगर मैं दुखी हूं तो मुझे पसंद नहीं है, दुखी मैं पसंद नहीं हूं, जो दुख से छूटना चाहता हूं, मानी मैं सुखी रहूं, ये मैं अपने को देखना चाहता हूं। मैं तो अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अहमस्मि सदा भामी कदाचिन्नहमप्रियः ब्रह्मैवाहम् अतस्सिद्धम्। मैं ही ब्रह्म हूं पूर्ण रूपो, सच्चिदानंद लक्षणम्। अभी कहते हैं ये दृश्यमान नगरी दर्पण से अभिन्न है, ऐसे हमारे भीतर देखने वाला ये जगत हमसे अभिन्न है, मानी मिथ्या है। मैं और मेरा प्रतिबिंब मिलके कितना होता है, दो होता है कि नहीं, आप लोग कौन सा गणित पढ़े स्कूल में, ठीक एक पत्ता एक क्या होता है आपका नया गणित है, और मल्टीपल इमेज दिखे साथ में आईना रखे, आप 100 दिखते हैं, एक पत्ता 100 कितना हो गया, ये क्या गणित समझ आते हैं। मिथ्या और मैं मिला के कहता रहता हूं एक ही रहता है। ये मिथ्या जगत आत्मा में प्रतीत होने पर भी मैं क्या हूं, अद्वयम्।

ആത്മാന ഏവാ അദ്വയം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തയെ. ദേഖോ ഭായ്, ആപ് കിസി വ്യക്തി കോ ഗുരു കർക്കെ ബുലാ സക്തേ ഹൈ? കിസി നെ എയർപോർട്ട് മേ ഹംസേ പൂച്ചാ, ആർ യു ഗുരു? അമേരിക്കൻ ലോഗ് ഐസാ ഹൈ, ആർ യു ഗുരു? ആപ്കാ ക്യാ ഉത്തര ഹോഗാ? അഗർ ആപ് ബി അഗർ ഐസാ അമർ ജേ ഡ്രസ് പഹൻതേ ഹൈ ഔർ പൂച്ചേ കോയി പൂച്ചാ ആപ് ഗുരു ഹൈ ഗുരു മായി ഹൈ, ആപ് ക്യാ കഹേംഗേ? मैंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, जब मेरा चेला मेरे से पढ़ता है तब मैं गुरु हूं, बाकी मैं स्वामी हूं, है कि नहीं? अगर आपको कोई पूछे आप पत्नी है तो क्या कहेंगे आप? जब मेरे पति परमेश्वर, इंग्लिश में कहते हैं पत्नी को बेटर हाफ, अगर पत्नी बेटर हाफ है तो पति क्या है? वर्स्ट हाफ. ओके, सो I am a better half. मैं अगर पत्नी हूं, कोई पत्नी मिल कोई होती है? आप कहते हैं मैं स्त्री हूं, जब मेरे पति परमेश्वर का सानिध्य रहता है तो मैं क्या हूं? पत्नी हूं, बाकी पत्नी नहीं हूं. गुरु भी क्या है? जब शिष्य को पढ़ाते हैं और शिष्य भी पढ़ रहा है, कभी कभी शिष्य सामने बैठा ही होता है, पढ़ता नहीं होता है, गुरु का भी प्रारब्ध होता है ना. महाराज से सुना रहे थे भागवत भाग में, किसी कथा में एक माई आगे आके बैठ गई और बड़ी झूमती थी कथा में, महाराज की कथा सुन सुन के. तो महाराज को बड़ा उत्साह हुआ कि कोई तो आनंद से सुन रहा है कथा. तीन दिन के बाद उसका पति आया, उन्होंने कहा, महाराज ने कहा तुम्हारी पत्नी हमारी कथा का बड़ा आनंद ले रही है. कि महाराज जी जाने दो. कि क्यों, क्या बात है? वो तो सुनती नहीं है. वो तो बहरी ऐसे ही बैठती है आपके सामने. तो महाराज जी गुरु नहीं रहे क्योंकि वो समझती नहीं थी कुछ. दो कथाकार चर्चा कर रहे थे, एक ने कहा जब मेरी कथा में श्रोता लोग घड़ी की ओर देखते हैं तो मेरा उत्साह मर जाता है क्योंकि वो बोर हो गए हैं. दूसरा कहता है आप तो नसीब वाले भाग्यवान है, आपकी कथा में घड़ी में देखते हैं, मेरी कथा में तो घड़ी हिला हिला के देखते कि चलती है कि बंद हो गई है. इस यहां अच्छा रखा है, पीछे रखा है, मैं ही देख सकता हूं टाइम. समझ में आया? प्रबोध समय गुरु मूर्ति, गुरु कोई होता नहीं है, स्वामी होगा, साधु होगा. जब हमारी बुद्धि में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए जो सहायता देता है उसी का नाम क्या है? गुरु. गुरु व्यक्ति ने है, गुरु इज अ रोल टू प्ले. यहां जो मुझे उपदेश करके जिन्होंने मेरे मुझे जगाया है, किससे जगाया है? अनादि काल से मैं ये जगत को सत्य मान के उसमें बह रहा था, उससे मुझे आत्म तत्व की ओर जगा दिया और ये जगत मेरे से अभिन्न है, मिथ्या है, ये बोध करा दिया उस गुरु मूर्ति. और ये गुरु मूर्ति जो है वही मेरा भी आत्मा है. गुरु और आत्मा दो नहीं है. आत्मा का बोध कराने वाला गुरु, गुरु भी क्या है फिर? दूसरा है. गुरु कहता है जो मेरा आत्मा, तेरा आत्मा, सर्व का आत्मा, एक अद्वितीय ब्रह्म है. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयी पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति. इस प्रकार का बोध करने वाले कौन है? दक्षिणामूर्तये. ये दक्षिणामूर्ति भी वही मेरा आत्मा है. जो ये ज्ञान कराने वाला सब गुरु क्या है? दक्षिणामूर्ति. प्रातस्मरणीय महाराज श्री का पूर्णानंद स्तव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है. तो महाराज जी ने कहा, कई बार जब महाराज जी अपनी मस्ती में होते थे नए नए श्लोक ये रचना करते जाते, कई बार मुझे भी लिखवाया उन्होंने, तो कहते हैं कि जितने पूर्णानंद स्तोत्र में जो गुरु की महिमा है
वो तीनों काल में जो भी गुरु है उसकी स्तुति की गई है, कोई व्यक्तिगत गुरु की नहीं है। ये तो सब गुरु में जो गुरु तत्व है वो कौन है? साक्षात शिव है, साक्षात दक्षिणामूर्ति है। मैंने कह दिया दक्षिणा का अर्थ ये भी होता है जो शिष्य को उपदेश करने में दक्ष है, कुशल है। दूसरा, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके बैठे हैं वो दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति सदाशिव हमारा ही आत्मा है। और सदाशिव का आत्मा क्या है? मैं हूं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरा ये नमस्कार है। अभी एक प्रश्न होता है, आज मैं प्रश्न छोड़ के आपको छोड़ने वाला हूं, कर उसका उत्तर दूंगा। अभी आप देखिए दर्पण में जो नगरी दिख रही है वो दर्पण से अभिन्न है, इसलिए मिथ्या है। हमारी चित्तवृत्ति में भी, हमारे चिदात्मा में भी जो जगत दिख रहा है, स्वप्न जगत भी आत्मा में ही दिखता है, जागृत जगत भी कहां दिखता है? आत्मा में ही दिखता है। कभी ध्यान में बैठो तो मन में प्रश्न पूछना कि मुझे शब्द सुनाई रहा है, इस शब्द में कहां सुन रहा हूं? कान में कि मन में कि आत्मा में? आप ये प्रश्न का उत्तर अपने आप देखते जाओगे तो ध्यान हो जाएगा। यू आर हियरिंग दिस साउंड, इन हियरिंग देर इज नो एफर्ट। सुनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लिखने के लिए प्रयत्न है, बोलने के लिए प्रयत्न है, ये इच्छा पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक किया जाता है। सुनने में हमारी इच्छा हो के ना हो शब्द कान में पड़ते हैं, मन जागृत है, मन वो शब्द को ग्रहण करता है। मन में भी जो शब्द है वो सुनाई रहा है किसको मालूम पड़ता है? हाँ, आत्मा को मालूम पड़ता है। माने आखिर ये जो मैं शब्द उच्चारण कर रहा हूं वो कहां ग्रहण हो रहा है? आत्मनि चिदात्मनि। ये रूप दिख रहा है वो कहां मालूम पड़ रहा है? आत्मनि। ये गंध मालूम पड़ती कहां? चिदात्मनि। ऐसे जागृत जगत कहां मालूम पड़ता है? आत्मनि। जैसे नगरी तो दर्पण से अभिन्न है, ऐसे ये जागृत जगत भी जो, स्वप्न जगत भी जो आत्मा में मालूम पड़ता है वो आत्मा से क्या है? अभिन्न है, इसलिए क्या है? मिथ्या है। कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम। घड़ा मिथ्या इसलिए है कि मिट्टी से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं है। जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर पराधीन हो उसको मिथ्या कहते हैं। ये कुर्सी भी लकड़ी के बिना नहीं है, ये कपड़ा भी सूत के बिना नहीं है, ये कुंडल भी सुवर्ण के बिना नहीं है, ये पानी की तरंग भी पानी के बिना नहीं है। तो पानी है, तरंग है, तरंग नहीं है पानी है, पानी तरंग पे आधार नहीं रखता है, तरंग पारी पे आश्रित है, इसलिए वो सत्य है। अत्व में मानता था जगत पे मेरा, मैं जगत पे आधारित हूं, अब मालूम पड़ा जगत का आधार क्या है? मैं हूं, मैं हूं, जगत है, जगत नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है। ये जगत का मालूम नहीं होता है, स्वप्न में भी मालूम नहीं पड़ता ये जगत, फिर भी मैं हूं, अहम अस्मि। इसलिए ये जगत मिथ्या है, मैं सत्य हूं, और सत्य पर मिथ्या का कोई भार नहीं होता है, और सत्य वत्ता मिथ्या करेंगे तो दो नहीं होता है, क्या होता है? एक ही होता है। सत्य मिथ्या से डरता है कि नहीं? अरे घड़ा तू नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, अरे ये चीज नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, अरे मारो गोली, सबके बिना तुम रह सकते हो।
महाराज ने एक दिन हमको बताया कि ये जागृत की जितनी चीजें हैं वो सुषुप्ति तक तो पहुंचती नहीं है, तो ये कौन सी महान चीज है, और इनको छोड़ने में आनंद आता है कि पकड़ के रखने में आनंद आता है? आपको नींद आती है उस समय याद आती है मेरी तिजोरी में 100 तोला सोनी है, 100 तोला मालूम है, मेरी तिजोरी में 100 तोला सोना है, सुवर्ण है, और मैंने ठीक बंद नहीं किया है, कोई उठा के ले जाएगा। जब तक सुवर्ण का ख्याल रहेगा, गहने का ख्याल रहेगा, आपको नींद आएगी? आप एक बार जाके चेक कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी मुझे लगता है कोई चोर आएगा, नींद नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? एक गोली खाएंगे। गोली किसके लिए? इसको भूलने के लिए। तो जगत छोड़ने पे सुख होता है कि पकड़ने पे? आप लोग कुछ बोलते नहीं मेरे हैं महाराज, आपको छोड़ने में सुख होता है 8:30 बजे तो एक प्रवचनकार कह रहा था, हमारा जब प्रवचन पूरा होता है तो लोग बड़े खुश होके जाते हैं तो भाई बताओ, छोड़ने का सुख है कि पकड़ के रखने का है? जो स्वप्न तक नहीं रहता है, सुषुप्ति में छूट जाता है, और सुषुप्ति में आपको आनंद आता है कि दुख होता है? कई लोग अभी भी उत्तर नहीं देते, सो रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना मजा आ रहा है, मानी जो सुषुप्ति तक तो रहता नहीं है तो फिर आत्मा में कहां से होगा? ये जगत में मेरा का चिंतन करते करते हम ऐसे फंस गए हैं। तो सत्य मैं हूं, ये सब मुझ पर आधारित है, मैं इन पे निर्भर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब प्रश्न उठा जो कल का टॉपिक होगा। तो महाराज जी आप कह रहे हैं, अब दो चीज हो गई, ये जो दृश्यमान नगरी है वो किसने बनाई, ये जगत किसने बनाया? मैंने और आपने तो नहीं बनाया, एक तो पक्का है कि नहीं? ये जगत था, उसमें हम पैदा हुए, कि जगत को पैदा करके आप उसमें आए? जगत था, सब संबंध करने वाले थे, मेरा बेटा आ रहा है करके बाप तैयार था, मेरा भाई आ रहा है करके भाई बड़ा तैयार था, मेरी बहन, सब लोग तैयार थे, जगत था, मां बाप भी थे, मैं वहां गया। इसलिए ये जगत किसने बनाया, जिसका प्रतिबिंबन आत्मा में हो रहा है, वो जगत कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब उत्तर बाकी रह गया। इसलिए इसके बाद के श्लोक में ये जगत जो है वो जगत कर्ता ईश्वर किस प्रकार से ये जगत का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रकट करते हैं, और जगत और उस ब्रह्मात्मा में क्या संबंध है, वो भी मिथ्या सत्य का संबंध है कि दोनों सत्य है, जितना जगत सत्य इतना ही ब्रह्म तत्व सत्य है, दो सत्य समान है कि अलग है, इसकी चर्चा करने के लिए अगला श्लोक पढ़िए। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदम्, धीरे से, बीजस्यान्तरि वांकुरो,

0: ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तो वो भी आपके मन से फिर वो नहीं कर सकते आप। उसमें भी परमात्मा कहते हैं कि मैं जिस प्रकार अन्वेषण कराऊं इसी प्रकार करना है। तो वो अन्वेषण का बड़ा महान श्लोक है मांडुक्य उपनिषद। और कुछ भी नहीं तो ये सातवां श्लोक एटलीस्ट मुखपाठ भी कर लिया तो उसके संस्कार आपको बड़े काम आएंगे। सिर्फ मैं आपको उच्चारण कराऊंगी, फिर उसके साथ अन्वेषण कैसे करना है उसके ऊपर हम विचार करेंगे।

विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं। वह न अंतः प्रज्ञ है। अंतः प्रज्ञ याने भीतर की दुनिया हमारी क्या है, तो बोले स्वप्न अवस्था। अंतः याने वो स्वप्न अवस्था को भी जानने वाला नहीं है, वो अंतः प्रज्ञ नहीं है, याने वो स्वप्न अवस्था नहीं है। याने सूक्ष्म भोग जो हो रहा है वो सूक्ष्म भोग वो नहीं है, जिसके जरिए जिसके अधिष्ठान से सूक्ष्म भोग हो रहा है, सूक्ष्म भोग का अधिष्ठान वो है। न बहिष्प्रज्ञ वो विश्व भी नहीं है, न उभयतः प्रज्ञ सुषुप्ति अवस्था भी वो नहीं है, न प्रज्ञान घन, न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। अभी कहते हैं कि नान्तप्रज्ञम न बहिप्रज्ञम, ये जानने वाला भी नहीं है, भीतर भी नहीं है, तो क्या वो शून्य है, कुछ नहीं है, तो बोले नहीं, कुछ नहीं है ऐसा भी वो नहीं है। अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्य है, उसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम अव्यपदेश्य यानी अकथ्य, उसका कथन नहीं कर सकते। एकात्म प्रत्यय सारम, तीनों अवस्थाओं में जो तीनों अवस्थाओं को चलाने वाला, तीनों अवस्थाओं में उपस्थित, तीनों अवस्थाओं जैसा परिवर्तनशील नहीं है, अवस्थाएं परिवर्तनशील है, तीनों अवस्था में रहता है तो भी कैसा है, एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय से ही सब में विजृंभण कर रहा है, प्रति एक में प्रत्येक आत्मा से तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक आत्मा की तरह रहता है, और प्रत्येक आत्मा कैसा है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। प्रपंचोपशमम, पांच पंच महाभूत से उत्पन्न जो भी है वो उसमें नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वही आत्मा है, वही साक्षात जानने योग्य है। यहाँ हमारी अब बात आती है, वह जो कुछ भी है वो साक्षात जानने के योग्य है, साक्षात्कार करने के योग्य है। कैसे साक्षात करने से योग्य है, तो भाई स्वामी जी का अपने प्रवचन या बुक सुना पढ़ा होगा, तो वहाँ एक स्टेटमेंट आता है, ब्रह्म साक्षात्कार साधन निरपेक्ष ही शक्य हो सकता है। साधन निरपेक्ष यानी साक्षात्कार करने के योग्य है, पर कारण क्या, किससे साक्षात्कार करना है, तो बोले कोई भी कारण से ये साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रपंच उपशमम, ये जो कारण जो है वो प्रपंच का कारण है, उसका जब उपशमन हो जाएगा तब जो रह जाएगा वही वो परमात्मा है, वही जानने के योग्य है। तो अब एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डाल दीजिए, आंखें बंद, कोई लिखना नहीं, समय के ऊपर ध्यान मत देना, शांति से मैं शांति पाठ करूंगी, आंख खोलना कहूंगी तभी आंख खोलना। आज अंतिम दिन है, यहाँ जो आश्रम की परंपरा है, परंपरा के अनुसार यहाँ से जो भी उनकी आश्रम की जो रीत है वो संक्षिप्त में रिक्वेस्ट करूंगी, संक्षिप्त में जो भी है वो करेंगे और फिर यहाँ से हम विदाई लेंगे। ओम का उच्चारण होगा, ये परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा संबंधी ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं किया वो परमात्मा को भीतर है पर जान नहीं सकेंगे, इसीलिए ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अब जानने के लिए जो भी विचार थे कि परमात्मा कोई नाम से, रूप से, कोई रंग से, कोई स्पर्श से मिलेगा, तो वो हमने जान लिया कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पर है, कोई भी प्रकार के कर्म से पर है, यानी उसका जो रूप है, जो परमात्मा का अन्वेषण करके
विशेष परमात्मा को मेरे भीतर जानना है वो करीब करीब कैसा है? वो अदृश्यम है, अरूप है, कोई ऐसा है जो मेरे भीतर ही है और वो जानने योग्य है, वो चौथा है, वो मुझे जानना है। ओमकार का उच्चारण होगा, ओमकार के उच्चारण के ऊपर आपको ध्यान देना है, पर इसके साथ साथ ओमकार के उच्चारण के बाद जो अनुच्चारण अवस्था है, अशब्द अवस्था है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ये दूसरी बात। और उसके साथ साथ ओमकार के उच्चारण को और अनुच्चारण को जानने वाला जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये जो जानने वाला जो है वो सिर्फ आपको ही अनुभव हो सकेगा, आप ही भीतर जो जान सकेंगे कि ये दोनों को मैंने जाना, भाव और अभाव को मैंने जाना, वो जो जानने वाला जो है वही ये तुरीय परमात्मा है। ओमकार के माध्यम से, ओमकार के अवलंबन से हम ये तुरीय जो शांत है उस तक पहुंच सकते हैं। ये तुरीय, ये शांत अवस्था भीतर है ही, पर उसके ऊपर ध्यान देने के लिए ये उच्चारण का सहाय लिया जाता है, ये अवलंबन का सहाय लिया जाता है।

जब उच्चारण हुआ तो उच्चारण वाणी का कर्म हो गया। ये जागृत अवस्था का एक भाग हो गया। और ये वाणी ने जब अ उ म ओम जैसा नाद निकाला तब दूसरी इंद्रिय की प्रक्रिया क्या हुई, मेरे ही कानों से मैंने ये सुना, यानी कर्ण इंद्रिय भी वहां आ गई। अब ये उच्चारण की जो क्रिया, उच्चारण का जो कर्म हुआ, ये जागृत अवस्था में मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है जो बिना कोई करण के जरिए कुछ ऐसा भी घटित हुआ जिसके लिए करण की जरूरत नहीं पड़ी, जिसको जानने के लिए भी कोई करण की जरूरत नहीं है। और वो क्या है, तो जो उच्चारण के ऊपर ध्यान दिया, आपके चित्त की जो वृत्ति ने जिसने उच्चारण के ऊपर ध्यान दिया, वो कोई शब्द नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है। जागृत अवस्था की कोई भी बात, कोई भी गुण, वो ध्यान देने वाली जो ज्ञप्ति है, जो ज्ञान की वृत्ति है, वो उससे एक नहीं होती। ये जागृत अवस्था में कोई उससे अलग अवशिष्ट है, वही वो तुरीय परमात्मा है जिसने ध्यान दिया। ओमकार के बाद जो अनुच्चारण अवस्था है, अब उसके ऊपर ध्यान देना। ये इसलिए आपको बताया जाता है कि उच्चारण है, सुनाई देता है, कर्म हो रहा है, फिर भी कोई अकर्म, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं बोलने वाला, फिर भी कोई वहां हो सकता है। और वो कौन है, जिसने जाना कि ये उच्चारण हुआ।

तब विचार कीजिए, उच्चारण की अवस्था को जिसने जाना, अपने मन से पूछिए कि ये अनुच्चारण की जो अवस्था है, अशब्द की जो अवस्था है, उसे कौन जान रहा है। अपने मन से पूछिए, ये कौन जान रहा है कि अब उच्चारण नहीं हो रहा है। ये करीब करीब सुषुप्ति जैसी अवस्था है, और जागृत में जब सुषुप्ति जैसी अवस्था होगी, जब स्थूल पदार्थ के भोग का अनुभव होगा, अभाव का, सूक्ष्म पदार्थ के अभाव का अनुभव होगा, और ये दोनों के अभाव का अनुभव हो रहा है, ऐसा जब अनुभव होगा तो वो अनुभव करने वाला ही वो परमात्मा है। सुषुप्ति में ये सब कुछ है, पर अनुभव करता वहां वो समय उपस्थित नहीं है। यहां कुछ ऐसी स्थिति है, स्थूल भोग नहीं है, अशब्द अवस्था है, उच्चारण हो गया है, सूक्ष्म भोग भी नहीं है, पर ये अभाव को जानने वाला है। पूछिए अपने मन से, ये जानने वाला है कि नहीं? और जानने वाला है तो जागृत के उच्चारण को जिसने जाना, उसी ने ये अशब्द जाना या कोई और है? पूछिए अपने मन से, उसी ने इसे जाना या कोई और है? इसका उत्तर लेने के लिए विचार भी नहीं करना पड़ता है। कोई भी करण इसका विचार करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये परमात्मा अवांग अमनस अगोचरम है। क्योंकि जिसने उच्चारण जाना, उसी ने ये अनुच्चारण जाना है।

शब्द अशब्द को जानने वाला ये जो है, मैंने ये अशब्द को, मैंने ही ये शब्द को जाना। अब इस क्षण जो कुछ भी ये स्थिति है, वही थोड़ी क्षण के पहले उपनिषद में दी गई स्थिति है। ये स्थिति वो परमात्मा कैसा है? जैसी मेरी अभिवृत्ति बन रही है अदृश्यम, अभी कोई भी चीज के, कोई भी दृश्य का अनुभव नहीं हो रहा है, ये स्थिति कैसी है? अव्यवहार्यम, कोई भी व्यवहार नहीं हो रहा है। यहाँ कोई ग्रहण भी नहीं है, कोई त्याग भी नहीं है। अग्राह्यम, ये अवस्था का वर्णन भी नहीं कर सकते, इसका लक्षण क्या है, खुद ही सोचिए क्या लक्षण है। इसके कोई लक्षण नहीं है। ये चिंतन का भी स्वरूप नहीं है, अचिंत्यम, इसका अंत है, इसका अंत कभी भी नहीं है, ये वृत्ति तो बनी ही रहती है, आपके साथ ही है, आपके पास ही है, आपके भीतर ही है। इसके ऊपर ध्यान देना, यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। एकात्म प्रत्यय सारम, भाव अभाव को जानने वाला, कोई प्रपंच का यहाँ आना जाना नहीं है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में से एक भी चीज ये शांत वृत्ति उत्पन्न करने में काम नहीं लगी। मन से इसका विचार भी नहीं करना पड़ा, यहाँ बुद्धि की भी जरूर नहीं हुई। प्रपंच का पूर्णतया उपशमन है और वही शांत स्वरूप है, यही आपका असली स्वरूप है, शांतम, यही आप शिव है, कल्याण है, अद्वैत है। ऐसी अवस्था दूसरी है ही नहीं। यह अवस्था अद्वैतम है, मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई है, जानने वाली भी मैं ही हूँ, मेरे ही भीतर ये अवस्था है, मैंने मुझे मेरे द्वारा ही जाना, यही अखंड आकार वृत्ति है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, इसे भली प्रकार विशेष प्रकार से जानिए, अहम वृत्ति से जानिए, यही आपका स्वरूप है। और कुछ न हो तो ये शांत अवस्था का वर्णन करते जाइए, उसका वर्णन आत्मा का ही वर्णन होगा। ये अवस्था ऐसी है जो जागृत भी है, आप जाग भी रहे हैं अभी, पर जो जागृत नहीं है, आंखें बंद है, आप सो भी रहे हैं, पर ये स्वप्न नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कर्म नहीं है, भोग नहीं है, पर ये सुषुप्ति नहीं है, ये कुछ उससे पर है, यही चौथी अवस्था, यही तुरीय अवस्था है, यही शांत अवस्था है, आपके भीतर है। उपनिषद गुरुजनों से इतना ही हमने जाना है कि यही है, मेरे भीतर ही है। आपको जब प्राप्त होगा, कोई भी देश काल में, कोई भी शरीर की स्थिति में, वो ऐसा अस्मि प्रत्यय से ही परमात्मा प्राप्त होता है।

नमः हरि ओम। अब आंखें बंद रखिए, बाहर जो भी कुछ आवाज आ रहा है, ऑन का साउंड हो रहा है, किसी की थैली का आवाज है, उसे सुनिए। हाथ छोड़ दीजिए, हाथ में जो अकड़न, पैर में जो अकड़न हो गई थी उसके ऊपर ध्यान दीजिए। धीरे से आंखें खोलिए।

हमें जो शरीर मिला है उसमें जो अवस्थाएं हमारी है वो हमेशा अस्वस्थ रहती है। हम जाग कर भी जाग नहीं सकते, उसमें भी हम सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था का ही दर्शन करते हैं। स्वप्न में स्वप्न को भी अच्छी तरह से देख नहीं सकते, उसमें भी हमें जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था अस्वस्थ करती है। और जो सुषुप्ति अवस्था रहती है उसमें तो हमारी जो छटपटाहट रहती है वह हमें किस कदर अस्वस्थ करती है। तो कोई भी अवस्था हो, माता जी ने जो 9 दिन का यज्ञ हमें प्रवचन के रूप में सुनाया है, तो हर अवस्था में हम जिस अवस्था में है उसको संपूर्ण परिस से न्याय देकर हमारी बाकी की जो भी अवस्थाएं हैं, बाकी की जो भी उम्र है, उसको बड़ी शांति से जी सके, ऐसे ही माता जी से हम आशीर्वाद मांगते हैं। और माता जी ने जो अगले साल के जो कार्यक्रम के बारे में बताया है उसकी भी मैं जाहिरात कर दूं। माता जी अगले साल भी यही 21 से 28 फरवरी तक यहाँ पे प्रवचन और दर्शन का लाभ देंगी। जो विनंती की गई है उसमें मार्च में पूरा मार्च अगर मनन आश्रम ले ले तो महाराज जी की, माता जी की और मनन आश्रम की बड़ी कृपा आश्रम पर रहेगी। और यह एक निवेदन है, मगर 21 और 28 फरवरी माता जी अगले साल 2009 में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी। मैं फिर से आप सबकी ओर से माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: प्रारंभ Oh,

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाथ सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

अर्दनाय नमः अभिवाद्याय नमः महाकर्मणे नमः तपस्विने नमः भूतधारणाय नमः उन्मत्तवेशाय नमः प्रच्छन्नाय नमः सर्वलोकाय नमः प्रजापतये नमः महारूपाय नमः महाकायाय नमः सर्वरूपाय नमः महायशसे नमः महात्मने नमः सर्वभूताय नमः विरूपाय नमः वामनाय नमः नराय नमः लोकपालाय नमः अन्तर्हितात्मने नमः प्रसादाय नमः अभयदाय नमः विभवे नमः पवित्राय नमः महते नमः नियताय नमः नियताश्रयाय नमः स्वयंभुवे नमः सर्वकर्मणे नमः आदये नमः आदिकराय नमः निधये नमः सहस्राक्षाय नमः विशालाक्षाय नमः सोमाय नमः नक्षत्रसाधक

सुवक्त्राय नमः, उदग्राय नमः, विनताय नमः, दीर्घाय नमः, हरिकेशाय नमः, सुतीर्थाय नमः, कृष्णाय नमः, शृगालरूपाय नमः, सर्वार्थाय नमः, मुण्डाय नमः, सर्वशुभंकराय नमः।

महापाशाय नमः, नित्याय नमः, गिरिचराय नमः, अमताय नमः, सहस्रहस्ताय नमः, विजयाय नमः, व्यवसायाय नमः, आनन्दिताय नमः, अमर्षणाय नमः।

न्यग्रोधाय नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वभुजे नमः तीक्ष्णाय नमः अपायाय नमः हर्यश्वाय नमः सहायाय नमः कर्मणे नमः कालविदे नमः विष्णवे नमः प्रसादिताय नमः।

काल विदे नमः ज्योतिषामय नाय नमः सिद्धये नमः संधये नमः विग्रहाय नमः खड्गिने नमः शंखिने नमः जटिने नमः ज्वालिने नमः।

नमः नक्षत्र विग्रहाय नमः भावाय नमः निभावाय नमः सर्वतो मुखाय नमः विमोचनाय नमः शरणाय नमः हिरण्यकवचोद्भवाय नमः मेखलायै नमः कृतिरूपाय नमः।

बन्धविमोचनाय नमः, बन्धनाय नमः, सुरेन्द्राणां युधिशत्रुविनाशाय नमः, सख्ये नमः, प्रवासाय नमः, दुर्वापाय नमः, सर्वसाधुनिषेविताय नमः।

तेजसे नमः अन्तर्नमः आत्मने नमः मृगालयाय नमः लंबितोष्ठाय नमः निष्ठाय नमः महामायाय नमः पयोनिधये नमः महादन्ताय नमः महादंष्ट्राय नमः महाजिह्वाय नमः महामुखाय नमः महानखाय नमः महोरम्णे नमः महाकेशाय नमः महाजटाय नमः असपत्नाय नमः प्रसादाय नमः प्रत्ययाय नमः गीतसाधकाय नमः प्रस्वदेनाय नमः अश्वनेहाय नमः आदिकाय नमः महामुनये नमः वृषकाय नमः वृषकेतवे नमः अनलाय नमः वायुवाहनाय नमः मण्डलिने नमः मेरुवासाय नमः देववाहनाय नमः अथर्वशीर्षाय नमः सामास्याय नमः सहस्रोर्जितेक्षणाय नमः यजुःपादभुजाय नमः गुह्याय नमः प्रकाशौजसे नमः अमोघार्तप्रसादाय नमः अन्तर्भाव्याय नमः सुदर्शनाय नमः उपहाराय नमः प्रियाय नमः सर्वाय नमः कनकाय नमः काञ्चनस्थिताय नमः नाभये नमः नन्दिकराय नमः हर्म्याय नमः पुष्कराय नमः स्थपतये नमः स्थिताय नमः सर्वशास्त्राय नमः धनाय नमः आद्याय नमः यज्ञाय नमः यज्वने नमः समाहिताय नमः नगाय नमः नीलाय नमः कवये नमः कालाय नमः मकराय नमः कालपूजिताय नमः सगणाय नमः गणकाराय नमः भूतभावनसारथये नमः भस्मशायिने नमः भस्मगोप्त्रे नमः भस्मभूततनवे नमः गणाय नमः आगमाय नमः विलोपाय नमः महात्मने नमः सर्वपूजिताय नमः शुक्लाय नमः श्रीरूपसम्पन्नाय नमः शुचये नमः भूतनिषेविताय नमः आश्रमस्थाय नमः कपोतस्थाय नमः विश्वकर्मणे नमः पत्ये नमः विराजे नमः विशालशाखाय नमः ताम्रोष्ठाय नमः अम्बुजालाय नमः सुनिश्चिताय नमः कपिलाय नमः कलशाय नमः स्थूलाय नमः आयुधाय नमः रोमशाय नमः गन्धर्वाय नमः अदितये नमः तार्क्ष्याय नमः अविज्ञेयाय नमः सुशारदाय नमः परश्वायुधाय नमः देवाय नमः अर्थकारिणे नमः सुबान्धवाय नमः तुम्बवीणाय नमः महाकोपाय नमः ऊर्ध्वरेतसे नमः जलेशयाय नमः उग्राय नमः वंशकराय नमः वंशाय नमः वंशवादिने नमः अनिन्दिताय नमः सर्वाङ्गरूपिणे नमः मायाविने नमः सुहृदाय नमः अनिलाय नमः बलाय नमः बन्धनाय नमः बन्धकर्त्रे नमः सुबन्धनविमोचनाय नमः राक्षसघ्नाय नमः कामारये नमः महादंष्ट्राय नमः महायुधाय नमः लम्बिताय नमः लम्बितोष्ठाय नमः लम्बहस्ताय नमः वरप्रदाय नमः बाहवे नमः अनिन्दिताय नमः सर्वाय नमः शङ्कराय नमः अकोपनाय नमः अमरेशाय नमः महाघोराय नमः विश्वदेवाय नमः सुरारिघ्ने नमः अहिर्बुध्न्याय नमः।

जितेन्द्रियाय नमः, गांधाराय नमः, सुरापाय नमः, तापकर्मरताय नमः, हिताय नमः, महाभूताय नमः, भूतवृताय नमः, अप्सरसे नमः, गणसेविताय नमः, महाकेतवे नमः, धराधात्रे नमः,

नमः परिधायै नमः परिपूजिताय नमः संयोगिने नमः वर्धनाय नमः वृद्धाय नमः घणिकाय नमः गणाधिपाय नमः नित्याय नमः धात्रे नमः सहायाय नमः देवासुरपतये नमः पत्ये नमः युक्ताय नमः युक्तबाहवे नमः सुदेवाय नमः सुपर्वणाय नमः आषाढाय नमः सुषाढाय नमः स्कन्धदाय नमः हरिताय नमः हराय नमः वपुषे नमः आवर्तमानाय नमः अन्याय नमः वपुश्रेष्ठाय नमः महावपुषे नमः शिरसे नमः विमर्शनाय नमः सर्वलक्ष्यलक्षणभूषिताय नमः अक्षयाय नमः रथगीताय नमः सर्वभोगिने नमः महाबलाय नमः साम्नायाय नमः महाम्नायाय नमः तीर्थदेवाय नमः महायशसे नमः निर्जीवाय नमः जीवनाय नमः मन्त्राय नमः सुभगाय नमः बहुकर्कशाय नमः रत्नभूताय नमः रत्नाङ्गाय नमः महार्णवनिपातविदे नमः मूलाय नमः विशालाय नमः अमृताय नमः व्यक्ताव्यक्ताय नमः तपोनिधये नमः आरोहणाय नमः अधिरोहाय नमः शीलधारिणे नमः महातपसे नमः महाकण्ठाय नमः महायोगिने नमः युगाय नमः युगकराय नमः हरये नमः युगरूपाय नमः महारूपाय नमः वहनाय नमः गहनाय नमः नगाय नमः न्यायाय नमः निर्वापणाय नमः आपादाय नमः पण्डिताय नमः अचलोपमाय नमः बहुमालाय नमः महामालाय नमः शिपिविष्टाय नमः सुलोचनाय नमः विस्ताराय नमः लवणाय नमः कूपाय नमः कुसुमाङ्गाय नमः पलोदयाय नमः ऋषभाय नमः वृषभाय नमः।

सुधा जाताय नमः, स्वर्गद्वाराय नमः, महाधनुषे नमः, गिरावासाय नमः, विसर्गाय नमः, सर्वलक्षणलक्षविदे नमः, गंधमालिने नमः, भगवते नमः, अनंताय नमः, सर्वलक्षणाय नमः, संतानाय नमः, बहुलाय नमः, बाहवे नमः, सकलाय नमः, सर्वपावनाय नमः, करस्थालिने नमः, कपालिने नमः, ऊर्ध्वसंहननाय नमः, यूने नमः, यंत्रतंत्र सुविख्याताय नमः, लोकाय नमः, सर्वाश्रयाय नमः, मृदवे नमः, मुंडाय नमः, विरूपाय नमः, विकृताय नमः, दंडिने नमः, कुंडिने नमः, विकुर्वणाय नमः, वार्यक्षाय नमः, ककुभाय नमः, वज्रिणे नमः, दीप्ततेजसे नमः, सहस्रपदे नमः, सहस्रमूर्ध्ने नमः, देवेन्द्राय नमः, सर्वदेवमयाय नमः, गुरवे नमः, सहस्रबाहवे नमः, सर्वांगाय नमः, शरण्याय नमः, सर्वलोककृते नमः, पवित्राय नमः, त्रिमधवे नमः, मन्त्राय नमः, कनिष्ठाय नमः, कृष्णपिंगलाय नमः, ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः, शतघ्नाय नमः, शतपाशधृषे नमः, कलायै नमः, काष्ठायै नमः, लवाय नमः, मात्रायै नमः, मुहूर्ताय नमः, अह्ने नमः, क्षपायै नमः, क्षणाय नमः, विश्वक्षेत्रप्रदाय नमः, बीजाय नमः, लिंगाय नमः, आद्याय नमः, निर्मुखाय नमः, सदसते नमः, व्यक्ताय नमः, अव्यक्ताय नमः।

त्रिविष्टपाय नमः, निर्वाणाय नमः, हृदयाय नमः, ब्रह्मलोकाय नमः, परागतये नमः, देवासुर विनिर्मात्रे नमः, देवासुर परायणाय नमः।

देवासुर गणाध्यक्षाय नमः देवासुर गण ग्रण्ये नमः देवाधिदेवाय नमः देवर्षये नमः देवासुर वरप्रदाय नमः देवासुरेश्वराय नमः विष्णवे नमः देवासुर महेश्वराय नमः सर्वदेवमयाय नमः अचिन्त्याय नमः देवात्मने नमः स्वयंभवाय नमः उद्गताय नमः त्रिक्रमाय नमः।

महर्षभाय नमः, विबुदाघ्राय नमः, सुराय नमः, श्रेष्ठाय नमः, स्वर्गदेवाय नमः, उत्तमाय नमः, संयुक्ताय नमः, शोभनाय नमः, वक्त्रे नमः, आशाणां प्रभवाय नमः, अव्ययाय नमः, गुरवे नमः, कांताय नमः, निजाय नमः, सर्गाय नमः, पवित्राय नमः, सर्ववाहनाय नमः, शृंगिने नमः, शृंगप्रियाय नमः, बभ्रवे नमः, राजराजाय नमः, निरामयाय नमः, अभिरामाय नमः, सुशरणाय नमः, निरामाय नमः, सर्वसाधनाय नमः, ललाटाक्षाय नमः, विश्वदेहाय नमः, हरिणाय नमः, ब्रह्मवर्चसाय नमः, स्थावराणां पत्ये नमः, नियतेन्द्रियवर्तनाय नमः, सिद्धार्थाय नमः, सर्वभूतार्थाय नमः, अचिन्त्याय नमः, सत्याय नमः, शुचिव्रताय नमः।

0: इति श्री लिंग महापुराणे पूर्वभागे रुद्र सहस्रनाम कथनम नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Shikaharini Mala of Srimad Appaya Dikshita, presented by Dr. M. Gokula Krishna Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Srimad Appaya Dikshitendra Rachita Shikharini Mala.
4: श्रीकांतद्रुहिणोपमन्युतपनस्कन्देन्द्रनन्द्यादयः

0: और यदि परमात्मा को बुलाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो दुर्वासना दुर्गंध है पंच क्लेशों के चलते चित्त जो दुर्गंध युक्त हो चुका है, पहले तो उन पंच क्लेशों को हटाओ, मरे हुए चूहे को हटाओ, उसके चलते जो चित्त दुर्गंध हो गया है, दूषित हुआ है, उसको सुगंध से भरो। तो सुगंध कहां से लाओगे, तो बोले उस शिव के पादारविंद, उसमें से जो निकला हुआ है सुगंध, पाद रूपी अरविंद कमल फूल कैसा है वो, उसकी सुगंध कैसी है, दिव्येर भेदो युक्तेर दिव्य गंधई अमंदई, मंद नहीं है अमंद है, यानी तीव्र सुगंधित है, जिसका सुगंध तो मंद हो चुका है ना, तो तीव्र सुगंध तो जिस समय बगीचे में तोड़ोगे उस समय का सुगंध वो तीव्र होगा। तो दुर्गंध से अनभिभूत होने वाली सुगंध, या समस्त दुर्गंध को दुर्वासना को अभिभूत करने की क्षमता वाली सुगंध, वो तो भगवान शिव के चरण से ही प्राप्त होगा, उससे अपनी चेता पेटी को सुगंधित बनाओ, तब दुर्गंध हटेगा। और जब सुगंधित होगी चेता पेटी, तब तक तुम्हें भी वहां रहने में आनंद आएगा, तो परमात्मा को भी आनंद आएगा। वाह क्या कहना है ना, गुरुस्नान जी महाराज आते हैं ना यहां, ये हॉल तो पूरे पूजा के लिए समर्पण होता है ना, बढ़िया मंच लगता है, बढ़िया सिंहासन पूजा के भगवान के दरबार होता है, और उस पूजा में ऐसे इत्र और ऐता सेंट क्या क्या क्या क्या फूल पूरा का पूरा है, सुगंध से भर जाता है कमरा, दरवाजे से अंदर घुसते ही मग मग मग मग। कमरे में आने के बाद कोई काम हो तभी जाना पड़ता है बाध्यता से, नहीं तो बैठे रहो आनंदित हो है? तो तुम्हारा चित्त भी इसी तरह सुगंधित युक्त बनाओ। लेकिन वो सुगंध किससे, पादारविंदम दिव्य गंध, शिव चरण रूपी कमल से निकले हुए सुगंध से सुगंधित करो, तो वो शिव का चरण यानी खुद शिव वहां प्रवेश कर सके। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी अपने चित्त को तुम निर्मल बनाओ। आसापास क्लेश दुर्वासनादि भेदा, भेदन करने में समर्थ, हटाने में समर्थ, दिव्य गंधी रमंदही आशा साटी कश्य पादारविंदम। ये शिवजी का नाम है वो क्या ना, आशा साटी का, ये शिवजी का नाम है, कभी सुना है, आज सुन लो, आशा साटिक आकाश रूपी धोती पहने हुए का चरण ले जी, आशा साटिकस्य पादारविंदम, आकाश रूपी साड़ी माने धोती कपड़े पहने हुए का चरण, उस चरण से निकलने वाली सुगंधी, उस सुगंधी से चेता पेटी अपने चित्त रूपी बक्से को तुम क्या करो, वासिताम सुवासिताम सुगंध से भरो। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ये, हींग नहीं तो हींग बांधा हुआ कपड़ा, हिंग निवास, भले उसमें हिंग नहीं है लेकिन हिंग का वास तो है ना उसमें। इसीलिए जिस कपड़े में हिंग बांधा हो वो कपड़े ही इतना सुगंध है, हिंग की वासना से भरा हुआ हो तो स्वयं हिंग की जो डल्ली है उसमें कितना सुगंध होगा। इसीलिए भगवान को ध्यान करने वाले व्यक्ति का चित्त रूपी पेटी ही सुगंध से भरा हुआ हो तो उसके चरण में और कितनी दिव्य सुगंध होगा है? जिसके चरण की छाप उसके हृदय में पड़ गया उतनी में इतना सुगंध है तो उस चरण में कितनी सुगंध होगी भाई। चेता पेटिम बासिता मे तनो तु, और आगे बोलते हैं, कल्याणीनम सरस चित्र गतिम सवेगम सर्वोंगितज्ञम अनघम ध्रुवलक्षणाढ्यम चेतस्तुरंगम अधिरुह्य चस्मरा चरस्मरारे तेन समस्त जगताम वृषभाधिरूढ़। संबोधन है इस श्लोक में भगवान शिव के बारे में शंकराचार्य जी ने दो संबोधन का प्रयोग किया। एक संबोधन तो है स्मरारे, स्मरा माने काम, कामदेव, कामदेव का शत्रु यानी कामदेव को नष्ट करके दग्ध करने के बाद सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव को जीवंत किया, लेकिन किस रूप में, स्मरण के रूप में जीवंत किया। पुराण का प्रसंग यह है, तुम लोगों ने कई बार सुना है, कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा और जब भी युद्ध हो तो देवता लोग तो हार जाए असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर, असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वो तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वो चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं, और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो ये असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब आसुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता है। और अमृतत्व न कर्मण न प्रजया धने न एके नेव अमृतत्व मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धने न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धने न। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए, न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तो बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में इति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मार्ग विचार कर और निमित्त मृत्यु मार्ग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है नहीं, और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं है। पत्नी मर गई, दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्रों से, चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए, वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना। ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है, सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं, तो भगवान विष्णु बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर विष्टा कर दी, और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है, बुरा नहीं मानना, इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है ना। ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है, तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है? बोलो, उनको तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो तुम्हें हमें है। हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी है? अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं? सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने हैं। सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो, और से न हो। अब ना शिव का पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, है? हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है। हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना। मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य जी ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव। माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो माया को शंकराचार्य जी ने कहा, अघटित घटना पटी ऐसी माया। अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम माया। तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है ना। और क्योंकि असुर माया के रहस्य को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं असंभव है, असंभव है, है? बोलो। पत्ते में वीर्य को धारण करके पत्ते से बच्चा पैदा करना संभव है कि नहीं? कौन पैदा हुआ पत्ते से? द्रोण। द्रोण का अर्थ पत्ता। और उसमें वीर्य धारण करके जो पैदा हुआ द्रोणाचार्य। ले लीजिए, क्या असंभव है बोलो। भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है? हैं? हो गया ना। अयप्पा स्वामी, अयप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्रा स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्रा अय्यप्पा। ले जी, मां विष्णु बाप शिव, क्या असंभव है बोलो। दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकर ध्वज बोलो, क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव। माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे, लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना। ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है, लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने। बोलते तो फिर मुकुर जाता वो। बोला नहीं, बोले तथास्तु। ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा? वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमेटी का, है? तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र कुबेर वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे? तो बोले उसका बेटा शिवजी का बेटा होना चाहिए, तो शिवजी के बेटा के लिए तो शिवजी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिवजी को समाधि से जागना पड़ेगा। शादी करने के लिए शिवजी को अपनी योग्य उनको पसंद दिखी लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा? और उनका प्रतिज्ञा, शिवजी की प्रतिज्ञा है सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं, बस। वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव। वो जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका? नारद जी का। और समाधि से जगाएगा कौन? कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। बड़े बड़े का समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं? ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा, तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारे बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है। ख्याल ये रखना है कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिव जी तो समाधि में बैठे कैसे शादी करेंगे, बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। एक काम करो, शिव जी भी यहीं कैलाश में है, पड़ोस में ही है, तुम रोज पार्वती को शिव जी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो। उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू लगाएं, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है आप कहते हो तो पार्वती की त्रिटी लगा दी और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गया वहां। अब इसी के आधार में शिव जी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दी कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ, आंख खोल कर देखा समाधि से, आंख खोल के देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी और उद्दंड की तरह हुआ, देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ, बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ। क्यों, बोले ये तो उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र है। हाँ। अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे, मुख्य समस्या ये है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं, क्यों इच्छा नहीं मारा, कामदेव मर गए और कहां से इच्छा होगी, बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा, इसलिए कामदेव का नाम क्या है, अनंग, अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा, बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना हा? जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा और स्मरण करते ही उपस्थित होता है, इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिवजी का नाम स्मरा हरा पड़ा, तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती का शादी हुई, कामदेव अनंग होकर जीवंत हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिवजी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़, वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़ भगवान हमारे बंबई के सेठ लोग बरसई पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो, फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो। शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ एक ही वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको। भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किसमें आरूढ़ हूं? बोले महाराज, दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरस चित्र गतिम सवेगम। देख लो, तुम्हारी नंदी ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, बेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यार सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई? और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम। ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं बोलो? है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सवे गम है, कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं, बोलो, डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो, जीपीएस की तरह जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाए, आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार की है, मोहनीश गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, अनुमति ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोडक्ट करने की अनुमति उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगित, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसे संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे। बोलो सर्व इंगितज्ञम, सवारी जो संकल्प कर उसके भावना को समझ कर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली, क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है, अनघम तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षणाढ्यम, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली। हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्य, चरा मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा, चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो, चर माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे, स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है, चर जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुह्य चरस्मरारे नेत समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घुमो खूब घुमो खूब घुमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस्तुरगा, मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए महाराज, क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: யஜ்ய கர்ணா ஓர் கரானா, வித்யா அத்தியன் கர்ணா ஓர் கரானா, और साथ में दान देना तो क्षत्रिय का धर्म है, पर दान लेना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है। वैश्य का धर्म है ब्राह्मण अनुगामी बने, ब्राह्मण का अनुगामी बने और कृषि का कार्य करें, गौपालन का कार्य करें, अथवा ये व्यापार का कार्य करे, ये वाणिक का धर्म, बनिए का धर्म है। और उसी प्रकार शूद्र का धर्म है कि वो सेवा करे, इन तीनों वर्णों की सेवा करे, ये उसका धर्म है नारायण। पर आज के समय पर हम अपने अपने धर्म को भूल गए, याद नहीं रहा और जिसके कारण भटक गए। इस प्रकार सबके धर्म को शास्त्र निर्धित करते हैं, ब्राह्मणोचित धर्म है। यज्ञ करना और कराना, महाराज हम यज्ञ करते हैं, वातापि नामक असुर उसमें नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण लोग आए दक्षिण से और इधर प्रार्थना की और कहा कि बीच में ये असुर हमें तंग देता है, करता है। और उसी समय विंध्यांचल पर्वत भी हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा था कि मैं भी सुमेरु पर्वत के समान श्रेष्ठ बन जाऊं, और उसके लिए बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे। वशिष्ठ कुंभक ऋषि से प्रार्थना करने पर कुंभक ऋषि ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार किया और दक्षिण की यात्रा करने के लिए मन में विचार किया। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। भगवान विश्वनाथ से ने कहा कि तुम परोपकार के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। भगवान विश्वनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया। जब जा रहे थे तो मार्ग में विंध्यांचल ने देखा कि महामुनि अगस्त आ रहे हैं, उनकी सेवा सत्कार सम्मान के लिए ये विंध्यांचल आगे बढ़े। तो विंध्यांचल के मन में घमंड है, मुनिवर पहचान गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं वृद्ध हूँ, तुम्हारी ऊंचाई बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे सिर झुकाकर लेटकर तुमने मुझे प्रणाम किया है, ऐसे ही तब तक लेटे रहो जब तक मैं दक्षिण से वापस लौट करके न आ जाऊं। ना तो मुनि अगस्त दक्षिण से वापस लौट करके आए और न विंध्यांचल खड़ा हुआ। आज भी देखें तो विंध्यांचल पर्वत को देखकर ऐसा लगता है जैसे शीश झुकाए बैठा हो। विंध्यांचल पर्वत को लेकर जैसे ही पार करके महामुनि अगस्त दक्षिण में गए और समुद्र के अंदर छुपने वाला वातापी असुर जो ब्राह्मणों को अत्यंत त्रास दे रहा था, मुनि अगस्त ने अंजलि में समुद्र लिया, ओम नमः शिवाय कहकर समुद्र के जल को सारा पी गए और इसके साथ उस असुर को निकाल करके समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों का कष्ट निवारण कर दिया। इस प्रकार सातों समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को पीने की ताकत महामुनि अगस्त में कहां से आई? बोले ये तो भगवान शिव के मंत्र का ही प्रभाव है। ओम नमः शिवाय कहकर, शिव का नाम लेकर के कुंभक ऋषि समुद्र को पी गए और कहा कि जब समुद्र के को पी गए तो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव छटपटाने लगे, तड़फड़ाने लगे और उन्हें बहुत दुख होने लगा, त्राही त्राही मच गई, समुद्र अव तो रुदन करने लगे और प्रार्थना करने लगे, मुनिवर कृपा करो कृपा करो। इस प्रकार जब उनसे प्रार्थना करते हैं तब महामुनि अगस्त उन्हें अपने शरीर से निकाल करके बाहर करते हैं। इस प्रकार समुद्र से इसको प्रकट किया महामुनि अगस्त ने। अगस्त भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसे ऋषियों के लिए कहा वशिष्ठ कुंभो भोगोतमाय। गौतम ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने भगवान त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि निवास करते हैं। भगवान शिव के परम अनन्य अनन्य भक्त हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। इतनी बड़ी उपासना करते हैं कि उनके उपासना के फल स्वरूप एक बार अकाल पड़ गया, कहीं कुछ खाने को नहीं है, सारी वनस्पति नष्ट हो गई है। गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से, भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से, गायत्री के जप के प्रभाव से उनके चारों तरफ हरियाली है। और खूब गौतम ऋषि जो उनके पास आता है उसे भगवान शिव के कृपा से उसे खूब अन्न जल पिला करके तृप्त करके उसे भेज रहे हैं। खूब ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, खूब सबकी सेवा कर रहे थे, सबको तृप्त कर रहे थे, कोई भूखा नहीं जाता था। भगवान शिव का अन्न क्षेत्र भंडारा निरंतर चल रहा था। देखकर ब्राह्मणों के मन में द्वेष हो गया कि महामुनि अगस्त, उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि का यश बढ़ रहा है। इस यश को देख करके ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या हो गई और उन्होंने ईर्ष्या के कारण एक षड्यंत्र किया। एक बूढ़ी सी गाय जो मरणासन पर थी, महामुनि जब स्नान करके ब्रह्म कुंड से निकल रहे थे, स्नान करके जैसे जाते तो मार्ग में बूढ़ी गाय को खड़ा कर दिया और वो गाय को जैसे उन्होंने हाँक आवाज छुआ तो गाय वहीं पर गिर पड़ी, मर गई। गौ हत्या सामने खड़ी हो गई और गौ हत्या का दोष मान करके सभी ने उनका बहिष्कार किया। कहा कि देखो, आपके द्वारा गौ हत्या हुई है, गौतम ने गौ हत्या की है। इस प्रकार ये हत्या का दोष गौतम के ऊपर जब आरोपित कर दिया गया, तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव का ओम नमः शिवाय कहते हुए जप किया और जप करके उनके इस गौ हत्या का निवारण करने के लिए स्वयं भगवान त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने साक्षात रूप से त्रिगुण देव प्रकट होकर के ये उद्घोष किया कि गौतम के द्वारा ये गौ हत्या नहीं हुई है, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। भगवान शिव साक्षात रूप से प्रकट होकर उनके गौ हत्या के दोष से उन्हें मुक्त करते हैं। इस प्रकार ऐसी भगवान शिव में अविचल भक्ति किसके अंदर है? बोले गौतम ऋषि के अंदर है। ये बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, अगस्त, गौतम जैसे जो मुनि हुए हैं, देवार्चित से कराय, माने इन चित अर्थ यहाँ क्या है, इन सब ने शिव की अर्चना की। अर्चना का मतलब होता है पूजा, शिव पूजन। वशिष्ठ ने शिव पूजन किया, अगस्त ने शिव पूजन किया, गौतम ने शिव पूजन किया, आदि आदि मुनियों ने देवार्षित चेत से कराया। भगवान शिव शेखर का अर्थात चंद्रमौली भगवान सदा शिव का इनके द्वारा अर्चन हुआ, पूजा हुई, इनकी पूजा हुई, इन्होंने पूजा की है, भगवान का अर्चन किया है। भगवान का अर्चन पुष्प से है, भगवान का अर्चन बिलु पत्र से है, भगवान का अर्चन गंध अक्षत तिल यव आदि से भगवान का अर्चन है। इन सब से भगवान का अर्चन करना चाहिए, अर्थात इन्हें भगवान को चढ़ाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात फल चढ़ाओ भगवान शिव को, बहुत अच्छी बात है। फूल चढ़ाओ भगवान को, अच्छी बात है। फूल नहीं चढ़ा सकते हो तो पत्ता चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। बिल्लू पत्रादि, तुलसी पत्रादि भगवान शिव में चढ़ाए। बोले ये नहीं चढ़ा सकते हो तो कम से कम एक लोटा जल तो प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शिवार्चन करना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। बोली यदि कहीं किसी काल में आप कहें कि हमारे हमें शिव बाण की प्राप्ति न हो, शिव का बाण नहीं मिलता है अर्थात शिवलिंग नहीं मिलता है, तो शिवार्चन कैसे करें, कैसे करें भगवान शिव की पूजा? तो कहा कि और कुछ नहीं मिलता, अंगुष्ठ मात्रम, ये जो आपके हाथ में अंगूठा है ना, यही तो शिव है, यही बाण है, कुछ नहीं है। तो अपने हाथ की प्रतिष्ठा करके, हाथ को रख करके, अंगूठे को ही शिव समझ करके, इसीलिए हमारे हाथ में अंगूठे को ब्रह्म कहा गया है और इस तर्जनी उंगली को जीव कहा गया है, और ये तीनों उंगलियां जो है नारायण, ये तीनों गुण है, इसीलिए पांच हैं। ये तीन जो उंगलियां हैं जिनमें से सबसे नीची उंगली कनिष्ठिका उंगली जिसको कहते हैं, ये सतोगुण है, और अनामिका उंगली ये रजोगुण है, मध्यमा उंगली ये तमोगुण है, ये तीन गुण है। इन तीन गुणों के साथ, तीन तीनों गुणों को अलग करके अर्थात अपने आप में से तीनों गुणों को अलग करके अथवा सतोगुण को इतना बनाए कि हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ता है किसकी अधिकता दिख पड़ती है। बोले तमोगुण की सबसे ज्यादा अधिकता दिखाई देती है, उसके बाद रजोगुण की अधिकता दिखाई देती है, और हमारे भीतर सतोगुण अत्यंत कम है, कम है। उपासना के द्वारा अपने रजोगुण, अपने सतोगुण को इतना बढ़ा लें कि रज और तम को नून कर दें, और जब रज और तम दोनों न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सतोगुण बढ़ जाएगा, तो तब क्या होगा? बोले ये जो हमारी तर्जनी उंगली है ना, जिसे जीव कहते हैं, इस तर्जनी उंगली को मिला लो। बोले किसके साथ? ब्रह्म के साथ में, अंगूठे के साथ में। इसलिए तर्जनी उंगली जब अंगूठे से लग जाती, ये मुद्रा बनती है, तो इसे क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा में बैठो। ज्ञान मुद्रा में हमेशा उपदेश देते हैं। बोले कौन? भगवान शिव। अर्थात ये अंगूठा ही ब्रह्म है, इसलिए अंगूठे को देखो, देखो देखो, देखने वाले को देखो, इस अंगूठे को देखो, और यही तो ब्रह्म है, ऐसा साक्षात शिव है, ऐसा समझ करके इसमें जल चढ़ाओ, इसी का अर्चन कर लो। भाव है नारा। भीम प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करते थे। भीम का नियम है कि जिस दिन वो शिव पूजा नहीं करेंगे, शिव का जल से अभिषेक नहीं करेंगे, भीम भोजन नहीं करेंगे। और भीम की आदत थी, पांचों पांडवों में भीम की आदत थी कि जैसे भोजन पूजन करके उठे तो उन्हें बड़ी जोर की भूख लगती थी, और पहला पहला काम होता था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत कर्म तजेत, सौ काम छोड़ो नहाओ, सौ काम छोड़ो पहले स्नान करो, और हजार काम छोड़ो क्या करो? बोले सौ काम छोड़ो स्नान करो, हजार काम छोड़ो तो भोजन करो, सहस्त्र तजेत, सहस्त्रम तजेत, सारे करो, हजारों कर्मों को छोड़ो, हरि भजेत, केवल भगवान का स्मरण करो। काम करना चाहिए, काम छोड़, दस काम छोड़ करके भी स्नान करना चाहिए, सौ काम छोड़ करके भी भोजन करना चाहिए, और हजार काम छोड़ करके भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र में कहते, नीतिकार कहते हैं। तो हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, तो उनका नियम था कि प्रतिदिन वो पूजन करते हैं, पूजनों उपरांत भोजन करते हैं, और आज कुछ विलंब हो गया है और वो यात्रा ही ऐसे करते हैं कि जहां जाएं उन्हें अगले पड़ाव पर कहीं न कहीं शिव मंदिर मिल जाए, तो शिव मंदिर मिल जाए तो भगवान का पूजन हो जाए, भोजन हो जाए, फिर आगे की यात्रा वनवास काल में पांडव आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। एक दिन की घटना थी कि बहुत देर हो गई, कहीं शिवलिंग नहीं मिला, भोजन का समय हो रहा है, आसपास कोई शिव मंदिर नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने सोचा कि भीम को कहीं आसपास शिव मंदिर नहीं मिल रहा है और जब तक ये शिव की पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, तो भीम ने क्या, अर्जुन ने क्या किया कि एक घड़े को लेकर उसे मिट्टी उल्टा करके मिट्टी में दबा दिया, तो घड़े का जो फायदा होता है वो गोलाकार में होता है, वो गोलाकार बना करके कह दिया कि भैया देखो यहाँ पर शिव है। भीम ने शिव समझकर बड़े प्रेम से पूजा की, पूजा करने के उपरांत भोजन कर लिया और भोजन करने के उपरांत जब बैठे थे अर्जुन ने कहा भैया आज तुमने जहां, उन्होंने मन में विचार किया कि भीम पूजा तो करता है पर कुछ देखता तो है नहीं, इसने कुछ शिव है या नहीं है ये कुछ देखा नहीं और घड़े उसी को शिव समझ करके पूजा कर लिया, भीम को भगवत शिव तत्व का बोध नहीं, केवल ये स्थूल पूजा करते हैं, स्थूल भीम मोटी बुद्धि के हैं, स्थूल पूजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में जब संदेह हुआ, उन्होंने कहा भैया आज आपने पूजा की, वहां शंकर जी थे? भीम ने कहा हाँ थे, वहां तो शंकर जी थे। कहा तुमने ठीक से देखा कि वहां शंकर जी थे? बोले हाँ हाँ मैंने देखा वहां शंकर जी थे। अर्जुन ने सोचा कि मैं जाकर, चलो दिखाओ शंकर जी थे वहां, ले गए साथ में, ले गए साथ में, जब दिखाया और कहा यहाँ शंकर जी, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इन्हें दिखाऊं। उस घड़े को जब उठाने, भीम कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे शिव यहाँ न हो, भीम की निष्ठा है, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे शिव यहाँ न हो। ये कहना था कि अर्जुन ने पूरा बल लगाया, सोचा मैं इस घट को निकाल कर बाहर करके दिखाऊं, परंतु वो बिल्कुल घट वहां से हिला भी नहीं, अर्थात भगवान शिव ने ये सिद्ध कर दिया कि भाव करके जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी भाव से उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। यथा माम प्रवदन्ते तथास्ते भजामि, जो शिव की सर्वात्म भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसको व्यापक रूप में ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात भगवान शिव यदि घड़े के रूप में भीम को भगवान शिव मिल सकते हैं तो क्या आपको अंगूठे के रूप में नहीं मिल सकते? परंतु अंगूठे में ऐसी बुद्धि तो हो, ऐसा निश्चय तो है, यही शिव बाण है, शिव बाण समझ करके, भगवान शिव का बाण समझ करके किसी काल में किसी समय आपको शिवलिंग नहीं मिलता है तो बड़े प्रेम से आप इसका अर्चन करें, पूजन करें, पर तो भी करें। मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है कि तो भी करें, तो भी शिवार्चन छोड़े नहीं, भगवान शिव का अर्चन करके, पूजा करके, भगवान शिव के जल आदि को चढ़ा करके ये देवताओं ने पूजन किया। चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, भगवान त्रिलोचन जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान सदाशिव चंद्रमौली चंद्रचूड़ चंद्रनाथ भगवान आशुतोष के श्री चरणों में रहकर उनके चरणों का निरंतर स्मरण करें। भगवान शिव निराकार हैं, व्यापक हैं, सनातन हैं, निर्दोष हैं, निर्लेप हैं, असंग हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं भगवान शिव। और वही भगवान शिव जब महेश्वर के रूप में, वो निराक शिव तत्त्वम् न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, हे महेश्वर आप किस रूप में हैं, ये हम वाणी कैसे कह सकती है, क्योंकि आप साकार रूप में

आपका एक रूप ने अनेक रूप रूपाया, आपके अनंत अनंत रूप है। आप जब रुद्री पाठ करते हैं तो रुद्री पाठ करते हुए पंचम स्कंद अध्याय में आप ये बोलते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं, अनेक रूपों में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तस्कराणाम पतये नमो नमः। यहाँ तक कि जो तस्कर हैं, चोर हैं, वो भी कोई और नहीं है, वो भी तुम ही हो। श्रेष्ठ तो हो ही हो, पर ये भी तुम ही हो। तो कहने का अभिप्राय ये, वो निकृष्ट से निकृष्टतम में अघोरे व्यो घोरे व्यो घोर घोर तरव्यो, भगवान शिव के लिए आया है कि आप अघोर हैं, इतने अघोर नहीं कि अघोर घोरे व्यो घोर घोर घोर तरव्य, अघोर से अघोर, अघोर से अघोर, अघोर से अघोर, अर्थात अत्यंत अघोरता में भी आप हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर भी आप हैं। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए आप कहते हैं, ओम सद्धो जातम प्रपद्यामि सद्धो जाताय वे नमो नमः, भवे भवे नाथ भवे भवत भवत वाय नमः। ओम भगवान आप कहाँ नहीं है, भवत भवाय च, आप भव भी आप हैं, भवतराय भी आप ही, भवतर भी आप ही हैं, कहाँ आप नहीं है, आप सर्वलोकों में हैं। सद्दो जातम प्रपद्यामि सद्दो जाताय वे नमो नमः, भवे भवे नाथ भवत भवत भवाय च, आप सभी रूपों में भव भवतर रूप में भी आप ही हैं प्रभु, आप अघोर रूप में भी हैं और आप श्रेष्ठ रूप में अत्यंत श्रेष्ठ। सर्व विद्या नाम अधीश्वरम, सारी विद्याओं के अधीश्वर आप हैं। ब्रह्माओ ब्रह्माओ ब्रह्माओ अधिपति, ब्राह्मणों में ब्राह्मणों में ब्राह्मणों के भी अधिपति अधीश्वर यदि कोई है तो हे शिव आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। वो श्रेष्ठता की पराकाष्ठा में भी वही है, निकृष्ट से निकृष्टता की पराकाष्ठा में भी वही है, जो आदि में भी है वही मध्य में भी है, तो बीच में भी वही होता है। यही वेदांत का सिद्धांत है, जो पहले और बाद में एक जैसा रहता है, बीच में भी वही होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति आम के बगीचे में जाए और साथ वाले को आम के पेड़ की ओर इशारा करके कहता है, ये आम है, ये आम है, ये अनार है, ये सेब है, सेब के बगीचे में जाकर, अनार के बगीचे में जाकर, सेब के बगीचे में जाकर, आम के बगीचे में जाकर, आम की पेड़ की ओर इशारा करके, सेब की पेड़ की ओर इशारा करके, अनार की पेड़ की ओर इशारा करके कह रहा है, ये अनार है, ये सेब है, ये आम है। और जो साथ में व्यक्ति है वो देखता है कि इस पेड़ में तो कहीं कोई अनार नजर नहीं आता, कोई सेब नजर नहीं आता, कोई आम नजर नहीं आता, ये आम सेब कैसे बता रहा है, ये अनार कैसे बता रहा है। कहा कि मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। इस पेड़ के दिखने से पहले भी वो सेब था, अनार था, आम था, और पेड़ जब दिख रहा है और उस पेड़ से जो निकलने वाला है आगे, वो अनार ही निकलने वाला है, सेब ही निकलने वाला है, आम ही निकलने वाला है, बाद में भी उससे वही निकलेगा, पहले भी वही था, तो बीच में ये जो दिखाई पड़ रहा है पेड़, ये दिखाई देने वाला पेड़ कहाँ है। बोले ये तो उसी के अंदर था, कहीं बाहर से नहीं आया, वही है। इसी प्रकार इस जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये भी शिव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, नारायण शिव ही है। इसलिए मानो तो कंकर, मानो तो शंकर, नहीं तो सारे कंकर। अर्थात शंकर प्रत्येक कंकर, कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर, जितने भी सृष्टि के कण हैं, कण कण में वो व्याप्त है, ऐसा सनातन शिव है। और ऐसे शिव के पावन नाम को हम अपनी जिह्वा पर रखें और सदैव

उस नाम का स्मरण करते रहे। शिव शिव शिव शिव भज मना निरंतरम, हे मन तू सदैव शिव शिव गान कर, शिव शिव रटन कर, शिव शिव जप कर, शिव शिव करता हुआ भव सागर से तरने के लिए। क्योंकि ये शिव ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, ये कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखते हैं। जो इनकी शरण में आ जाए, जिसने शिव शिव नाम लेकर इनका आश्रय कर लिया, भरोसा कर लिया, उसे भवसागर से भगवान ने तार दिया। तारा ही नहीं, वशिष्ठ जैसे मुनि को ये ख्याति प्रदान कर दी। अगस्त आदि इन देवताओं को, ये इन ऋषियों को ऋषि बना दिया। तो केवल शिव नाम ने, ऐसा शिव नाम हमारे हृदय में बसे और निरंतर हम भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण करें।

0: जगत के प्रति किसी भी जगत कार्य के प्रति दो कारण हेतु रूप के होते हैं। जैसे घड़ा बनाने के लिए कुलाल वाणी कुंभार और मिट्टी दो है, कुंभार है बुद्धिमान है, सोच समझकर घड़ाई का निर्माण करता है, उसमें घड़ा बनाने की कुशलता भी है, और मिट्टी जिसको पिंड बनाकर चक्र पे रखकर घुमा के जो मन में संकल्पित घट की आकृति है उसी को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। अभी यहां जो दुनिया के जितने मजहब है, धर्म है, फिरके हैं, सब लोगों ने जगत कारण के विषय में विचार किया, करना ही पड़ता है। एक बात सबकी अच्छी है कि हमने जगत नहीं बनाया, ये बना बनाया मिला है, बना के किसी ने रखा है। आई एम नॉट ऑथर्ड दिस वर्ल्ड, इट इज ऑलरेडी देयर। अब उस जगत सृष्टा के विषय में सबको अपना अपना सिद्धांत प्रकट करते हैं। सबने जो दृश्य जगत में सामान्य रूप से जो दिखता है उसके मूलक, उसके आधार पे व्याप्ति बनाई, अपना निर्णय रजू किया, इसलिए वो सब गलत हो गए। कुंभार और मिट्टी दो चाहिए, सुथार और लकड़ी दो चाहिए, सोनी और सुवर्ण दो चाहिए, मकान बनाने वाले मजदूर ईंट मट्टी दो चाहिए, आटा और ब्रेड बनाने वाला अलग होना चाहिए, बेकर एंड द ब्रेड, गोल्ड एंड द गोल्ड स्मिथ। ये सब जगह आपको थोड़ा शास्त्रीय नाम दिया जाए, मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं और कुंभार को निमित्त कारण कहते हैं। ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, ठीक है कि नहीं? रोटी बनाने वाला और आटा दोनों भिन्न है। इसी प्रकार से जगत को बनाने वाला ईश्वर कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, के पुरुष कहो, जो भी कहो, उन सब मजहबों ने यहां बड़ी भूल कर दी कि मसाला अलग है और बनाने वाला अलग है। अगर हम भूल से भी कह दे कि मिट्टी और कुंभार एक है तो गड़बड़ ये हो जाएगी, जब एक घड़ा खरीद के लाएंगे तो साथ में कौन आएगा? कुंभार आएगा, कुंभारण भी आएगी, उसकी सास तो पहले आ जाएगी और इसके 12 बच्चे भी आ जाएंगे। तो एक चीज खरीद के लाओगे तो 2 रूम के फ्लैट में क्या हो जाएगा? एक दिन में भर जाएगा, खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए ये जगत को देखकर उन्होंने निर्णय किया, उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग है। ये जो ईसाई धर्म है वो तो बहुत स्पष्ट कहता है गॉड इन हैवन क्रिएटेड द वर्ल्ड। उनका जो गॉड है वो स्वर्ग में रहकर स्वर्ग में से जगत बनाया। गॉड अलग है और स्वर्ग क्या है अलग है। उन लोग की फिलोसॉफी सुनोगे ना आपको उसी आ जाएगी। मैं तो कहता हूं वो लोग क्या कहते हैं, गॉड को कोई आकार नहीं है, निराकार है। निराकार होने पर भी कहां रहता है, स्वर्ग में रहता है। आपको समझ में आता है, बहुत मुश्किल है। अ फॉर्मलेस गॉड इज इन हेवन। और दूसरी बात, उनका जो ईशा है वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। अ फॉर्मलेस गॉड जो स्वर्ग में रहता है और आकृति रहित गॉड क्या है, पुरुष है। अब आपको और समझाऊं मैं, ये सबसे बड़ा धर्म सबका धर्मांतर करता है, इनकी ऐसी ऐसी सिद्धांत है। सात दिन में जगत बनाया, आठवें दिन सूर्य बनाया। वो सूर्य के बिना सात दिन कैसे गिनती की उनको पूछिए आप। सात दिन के बाद लगा गॉड को ये अंधेर है, ज्यादा जरा सूर्य को भी रख दे। देखो कॉक एंड बुल स्टोरी। हम अगर उनसे प्रश्न पूछे कि आपका गॉड अगर स्वर्ग में है और वहां से जगत बनाता रहता है, हम लोग को नीचे भेजता रहता पड़ाव पड़ाव करके, तो पूछेंगे कि गॉड ये स्वर्ग किसने बनाया, तो कहेंगे गॉड ईश्वर ने बनाया, ईशा ने बनाया। अब एक बच्चा भी प्रश्न कर सकता है कि महाराज ये स्वर्ग बनाने के पहले गॉड कहां था। स्वर्ग में स्वर्ग बनाया, वहां बैठ के जगत बनाया, और जगत बनाया तो पहले स्वर्ग बनाया तो उसके पहले कहां था, तो कहते अभी हमारा टाइम हो गया फिर मिलेंगे। आंसर नहीं है, अति प्रश्न करेंगे। वो लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है। देखो हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो एक बच्चा भी कहेगा सर आई कैन हेल्प यू। कैसे, स्वर्ग बनाने के पहले भगवान नरक में था तुम्हारा, नरक में बैठ के क्या बनाया, स्वर्ग बनाया। तो पूछा जाएगा नरक में भगवान बना के स्वयं ट्रांसफर हो गए, वो तो नहीं होगा, उनका नरक बहुत गर्म है। नरक भी बनाने के पहले कहीं होना चाहिए, वो कहां था, आकाश में था। आकाश भी तो सृष्टि है, आकाश भी सृष्टि के अंतर्गत है, उसके पहले कहां था, उनके पास उत्तर नहीं आया। थियोलॉजी, आपको आश्चर्य होगा सभी मजहब में यह तकलीफ है, निमित्त कारण जो चैतन्य ही होता है, कुंभार की तरह, सुथार की तरह, स्वर्णकार की तरह, वो हमेशा बुद्धिमान होता है और अपने कार्य से भिन्न होता है। वेदांत एक ही है जो जगत का दृष्टांत देखकर उसका अनुवादन नहीं करता है, अनुवाद माने उसका वर्णन नहीं करता है, न अपनी बुद्धि से निर्णय करता है, नहीं तो शून्य तक पहुंच जाओगे। शून्यवादी बौद्धों को भी कुछ नहीं मिला। तो यहां के उपनिषद कहता है, वेद भगवान कहते हैं, प्रमाण वेद है, जन्माद्यस्य यतः अस्य जगतः जन्म स्थिति भंगः यस्माद् ब्रह्मणः। ये ब्रह्मात्मा से जगत की उत्पत्ति स्थिति और भंग होता है, तो जगत कारण क्या है, ब्रह्म है। निमित्त कारण भी क्या है, परब्रह्म है। तो एक ही जगह पे दुनिया में ये बात आई कि जगत बनने वाला मसाला और जगत को बनाने वाला निमित्त कारण दोनों क्या है? अद्वितीय एक है। अब प्रश्न हुआ आगे, उपादान कारण जड़ होता है, निमित्त कारण चैतन्य होता है। अगर जड़ उपादान कारण ब्रह्म से एक है तो ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? मेरा जैसा जड़ हो जाएगा। जड़ हो जाएगा। इसको बचाने के लिए उपनिषद ने कहा कि वो भगवान की अनिर्वचनीय अचिंत्य शक्ति माया है जो ब्रह्म तत्व में अध्यस्त है, अध्यस्त होने पर भी अभिन्न है। जो सर्प रज्जु में दिखता है वो सर्प किससे अभिन्न है? रज्जु से ही अभिन्न है। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान से अभिन्न होती है। तो ये जो माया त्रिगुणात्मिका, सत्व रजत तमो गुणात्मिका, दूसरा लक्षण क्या? परिणामिनी। ये कभी स्थिर नहीं रह सकती है। सत्व रजस में परिणत हो जाएगा, रजस तमस में, तमस रजस में, रजस सत्व में, कभी कोई परिणाम नहीं होता। उसको साम्यावस्था कहते हैं। विषम अवस्था में परिणाम, साम्यावस्था में परिणाम अभी प्रकट नहीं होता है, उसको कहते निर्विकल्प साम्यावस्था। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राग् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देशकाल कलना वैचित्र चित्रीकृतम्। वो माया शक्ति जो ईश्वर से एक होकर देश काल का संबंध प्रकट करती है और उसमें पूरी सृष्टि प्रकट हो जाती है। पहले साम्यावस्था में बीज में अंकुर की तरह अव्यक्त थी, प्रलय समय अब क्या हो गई? प्रकट हो गई। आपका पूरा व्यक्तित्व, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, स्कूल के टीचर है, सब जो आपका व्यक्तित्व विशेष है वो सुषुप्ति में क्या रहता है? वहां ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है, ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है, ना बुढ़ा होता है, ना बच्चा होता है। सब कुछ क्या है उस समय? न जानामि। फिर ये फिर प्रकट होता है, जागते ही फिर स्त्री आ गई, फिर मां आ गई, फिर बिजनेस वुमन आ गई, सब आ गया। तो निर्विकल्प फिर सविकल्प, फिर निर्विकल्प पुनः मानी क्या? ये चक्र अनादि काल से चल रहा है। आपकी पहली जागृत कौन सा था आपका? आप लोग को मैं पूछ रहा, आपके जागृत की पहली बार कब जगे है? पहली बार कब सोए है? प्रेमपुरी के लोगों को प्रश्न करो तो क्या होते हैं? मौनव्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम, एकदम चुपकी लगा देते हैं। मौन व्या क्या? ना अनादि, न आदि विद्यते यस्य स अनादि। आरंभ नहीं हुआ है ये, कब से चल रहा है जागृत स्वप्न सुषुप्ति का चक्र? अनादि। जब ये चक्र अनादि है तो सृष्टि चक्र भी क्या है? अनादि। कब तक चलता रहेगा? ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक चलता रहेगा। और इसमें आपकी स्वाधीनता है कि पराधीनता है? जागना पड़ता है कि जगते हो? नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। कितने बजे तक? 12 बजे तो क्या करोगे? कम से कम कुंभकर्ण भी 6 महीना जागता था, वो भी जाग जाएगा। सपना आप अपनी इच्छा से करते आ जाता है। निद्रा, निद्रा आ रही है मालूम पड़ता है, आ गई है तो आजू बाजू बैठे वाले लोगों को मालूम पड़ता है, क्योंकि आपकी निद्रा का संगीत सब लोग सुनते हैं। इसको कहते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मीन यू मेक लॉट ऑफ साउंड इन द स्लीप। कोई सो नहीं सकता आपके आजू बाजू, ऐसा जोरदार। परवश जागना पड़ता है, सोना पड़ता है, नींद भी आ जाती है, आती है फिर कहती मैं आ रही हूं, फिर क्या होता है? गॉन। आज एक काम करना, कितने बजे सोए ये लिख के ले आना, एक्सेक्ट टाइम। 10:10 को सो गया बराबर, ऐसा हो सकता है? कितने बजे जगे लिख सकते हैं? लिखना हमको बताना, ठीक। अगर लिखते हो तो जग गए हो, सोए हो तो लिख नहीं सकते हो, मालूम है आपको? प्रेमपुरी वाले को प्रश्न ही पूछना, वो चुप हो जाते हैं। तो अनादि काल से ये चल रहा है, ऐसे सृष्टि भी पुनः पुनः पुनः अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से फिर अव्यक्त, कब तक चलती रहेगी? पूछो मत, ईश्वर की सृष्टि। और ये माया शक्ति भगवान के आश्रित रह के, भगवान कहते माया शक्ति किसकी है? मेरे मायाध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति सूयते प्रसूयते। जगत प्रकट करती रहती है, तो ये बीज में जैसे अंकुर अवस्था का सब अंदर मसाला है, ऐसे ये माया में सब कुछ है। माया ब्रह्म से क्या है? अभिन्न है। और ब्रह्म माया से क्या है? ब्रह्म माया नहीं है, माया ब्रह्म है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी अब्बा, अगर मिट्टी गड़ा है तो कुंभार की जरूरत नहीं है। जहां जहां मिट्टी होगी वहां क्या मिलेगा? घड़ा मिलेगा, है ना अब्बा? आप लोग तो बहुत जानकार है वेदांत के, तो आगे बढ़िए। तो महाराज, ये माया ने सृष्टि बनाई कैसे? अगर देखिए तो जैसे माया भी अपने संकल्प से विश्वामित्र ने जगत रच दिया, एक योगी ने एक रस्सी डाल के ऊपर चला गया और युद्ध किया। आप भी स्वप्नों में क्या करते हैं? सिंगापुर जाते हैं, क्योंकि यहां से कलकत्ता की टिकट से ज्यादा सस्ती टिकट किसकी है? सिंगापुर की है। तो कलकत्ता जाने से अच्छा कहां जाना है? सिंगापुर जाना है। वहां भी धोबी तलाव करके स्टेशन है, वहां भी देख के आ जाओ। सिंगापुर घूमने गए, अब आपने सिंगापुर किसने बनाया स्वप्न में? आप कोई कम पैसे वाले हैं? कितने धनवान है, सिंगापुर बना के रख दिया, वीजा भी ले लिया, एरोप्लेन भी आपने बनाया और वहां पहुंच भी गए, घूम धाम के भी आ गए। ये ट्रिप अच्छी है, पैसा हल्दी लगे ना फिट करी रंग चोखा आवे। तो भाई एक रुपया लगता नहीं और क्या हो गया? मन की उड़ान जाके आ गए। उठे तब कहां थे? भुलेश्वर में। सोए तब कहां पहुंच गए? सिंगापुर में। दूसरे दिन सो गए तो भुलेश्वर में। स्वप्न में पहुंच गए तो कहां? हांगकांग। आप तो बहुत वर्ल्ड ट्रैवलर है, कैसे हांगकांग बनाते हैं, सिंगापुर बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, ऐसी आपकी विशेषता है। तो आप कौन है, ईश्वर है कि ईश्वर से कम है? देखो, सिंगापुर बनाने वाला कौन होना चाहिए? स्वामी जी ये सब आप कहते हैं पर टिकता नहीं, बस यही जीव की सृष्टि है। आपकी सृष्टि क्या है, कम समय रहती है। ईश्वर की सृष्टि क्या है, ज्यादा समय रहती है। पर दोनों क्या है, आपने ही बनाया। आपकी स्मृति और चैतन्य दोनों मिलके उपादान कारण इसमें क्या है, संस्कार। सिंगापुर कबीर से में सुना है, मैगजीन में चित्र देखा है, और सब एयरलाइंस वाले सब चित्र दिखाते हैं ब्यूटीफुल, सब देख के संस्कार पड़ गया। रात को क्या दिख गया, सिंगापुर। इतना भजन करते रात को वृंदावन नहीं दिखता है, क्या दिखते है आपको वृंदावन का बाकी बिहारी का दर्शन होना चाहिए, वो तो महाराज होता ही नहीं हमको। हमारा सचमुच स्वरूप क्या है, महाराज जी ने हमको एक बार बताया था, एकांत में जब तुम रहते हो और तुम्हारे हृदय में जो स्फूर्णा होती है वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। एकांत में जाते हो तो तिजोरी में रखे हुए पैसे दिखते हैं, तो महाराज आपकी स्थिति कहां है, ब्रह्म में नहीं है, कहां है, लक्ष्मी में है, है ना। कहे तो भाई लक्ष्मी का चिंतन करते हैं। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। चित्र विचित्र जगत जिसकी अगली क्षण स्थिति नहीं है। हम लोग यही कह रहे थे, महाराज श्री के समय ये हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। महाराज जी जहां प्रेमपुरी महाराज बैठे वहीं बैठ के प्रवचन करते ऐसे आते थे, और 7:30 से 8:30 ये हॉल क्या था, जाम पैक। 20 मिनट आधा घंटा नीचे लिफ्ट में जाने में होता था प्रवचन के बाद। महाराज जी आए और गए और इतनी भीड़। अब क्या है, सब खाली कुर्सियां। वो भी एक जमाना था, याद आती है क्या जमाना था, ऐसा उत्सव जैसा लगे महाराज जी आते थे, वो सब निकल गया। तो समय ऐसा बदलता है, एक बार गया वापिस आता नहीं है, वो भी अच्छा है, गया बदलते जाओ चलते जाओ चरई बहती। तो सृष्टि भी नई नई स्फुरित होती है और चली जाती है, और आत्मा जो है ब्रह्म जो है वो तो ज्यों का त्यों भरपूर, उसमें कोई विकार नहीं होता है। इसका मतलब है विवर्त उपादान कारण है। ब्रह्मात्मा अपने में कोई भी विकार किए बिना ये पूरी सृष्टि प्रकट करते हैं। आप भी नित्य चैतन्य रूप में रहते हुए स्वप्न जगत प्रकट करते हैं, उसका विध्वंस भी कर देते हैं। आप कैसे हैं, जैसे पहले थे ऐसे ही बाद में हैं, वही साक्षी चैतन्य। ये जो जीव है जिन्होंने जगत बनाया स्वप्न, ये जो ईश्वर है जिन्होंने जागृत स्वप्न बनाया, ये दोनों प्रथम श्लोक में जीव का वर्णन किया, उसका स्वरूप का वर्णन किया, द्वितीय श्लोक में ये सृष्टि का और सृष्टा का वर्णन किया। ये सृष्टि सृष्टा से अभिन्न है। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। अब एक प्रश्न हो सकता है, महाराज आप कहते हैं जगत दिखता है, पर ये जगत जो है वो हमसे भिन्न है ऐसा मालूम पड़ता है, तो मैं और ये जगत दो हो गए।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तीन रात्रियों तक वो यम के महल में रहे, यम के भवन में रहे। आप कहां रहते हैं ये बड़ी बात नहीं, आप कैसे रहते हैं ये बड़ी बात है। वो रहे ये बात उनको नहीं कहना है शास्त्र को। वो कैसे रहें, तीन दिन तक रहें, वो कैसे रहें? बोले अनशनन, वो बिना खाए। और यह अनशनन शब्द का अर्थ केवल बिना खाए ऐसा अर्थ मत करना, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, माने जो भी वहां पर ऐश्वर्य था, जो भी सुख भोग की सामग्री थी, उसका बिना भोग किए रहे वो, ये इंद्रिय संयम है। और वो तत्क्षण उनका इतना विवेक जगा हुआ कि वो सोचते हैं कि यहां पर अब यम का भवन कोई सामान्य भवन तो नहीं होगा, क्योंकि यम तो यम है, वहां बहुत ऐश्वर्य का वर्णन है। आप श्रवण करते हैं कि यम बड़े भयंकर, लेकिन जहां गए हैं वो यम ब्रह्मज्ञानी है और बड़े दयालु ऐश्वर्यशाली हैं, सारी चीजें हैं वहां पर। उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए मांगो, धन ऐश्वर्य, वो उनके पास यदि कुछ भी न होता तो कहां से देते हो, रथ हाथी घोड़े गिनाया उन्होंने, ये जो चाहिए आप ले लो, वहां सब कुछ है, नाचना गाना भी है, आमोद प्रमोद के सारे साधन उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन है, पेय पदार्थ हैं, सुगंधी द्रव्य हैं, लेकिन अनशनन। आज वहां बालक नचिकेता सोच रहे थे कि मेरा दान हो चुका है, और दान हो चुका, अब इस जीवन पर मेरा अधिकार नहीं है। दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता है, स्वत्व उस पर नहीं होता है। आपने एक बार दान कर दिया, कर दिया, अब आप इतना भी नहीं कह सकते कि ये मेरी है। आपको इतना भी याद है कि ये मैंने दान किया है, ये वस्तु मेरी है, समझ लो कि उस दान में भी कुछ कमी रह गई है, उस दान में भी अभी प्रलोभन है, आप उस दान से भी अभी जुड़े हुए हैं, आपने पूर्ण त्याग अभी नहीं किया है, अभी संस्कार अवशेष हैं। इसलिए आप कभी सुनते हैं ना गुप्त दान, बोलते कि नहीं कि आप दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, एक बहुत अच्छी उक्ति है। माने पूर्ण रूप से स्वत्व का परित्याग कर देना, इसी का नाम वास्तविक दान है। बालक नचिकेता सोचते हैं मेरे पिता ने मेरे जीवन का दान कर दिया है, मृत्यु को, अब इस पर मेरा अधिकार नहीं, अब भोजन करूं तो इसका उपयोग करना है, कान से सुनूं तो इसका उपयोग करना, आमोद प्रमोद के साधनों का उपयोग कर लूं तो जीवन का उपयोग करना, यहां तक कि सोना भी जीवन का उपयोग करना है। वो ये कितना बड़ा इंद्रिय संयम आप कल्पना कर सकते हैं, बालक नचिकेता का कितना बड़ा इंद्रिय संयम है। ये श्रद्धाजन्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तत्पर संयतेन्द्रिय, तीनों सूत्र बराबर बालक नचिकेता के जीवन में घटते हैं। और तीन दिन के बाद आए यम, उन्हें मालूम पड़ा ये बालक कोई पृथ्वी मंडल से आया हुआ है और तीन दिन से भूखा प्यासा, और उन्होंने उस बहुत तत्परता से कहा अपने पत्नी को, हर वैवस्वतोदकम, आओ ले आओ, आहर जल ले आओ, और इसकी हम पूजा कर लेते क्योंकि अतिथि ब्राह्मण और बिना खाए पे हमारे द्वार पर तीन दिन तक रहा, अब हमारा कर्तव्य क्या है, हम तो गृहस्थाश्रम के व्यक्ति हैं और एक अतिथि भूखा रहे हमारे द्वार पर, ये बहुत बड़ा अपराध है। अतिथि देवो भव, गृहस्थाश्रम के व्यक्ति के लिए अतिथि देवता की तरह होता है, और ये तो भूखा प्यासा अतिथि सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कहीं अग्नि हमारे यमलोक को नष्ट न करे, इसके पहले इसको शीतल करो, शीतल करो। जल लेके उन्होंने पैर धोया, पूजा की, सम्मानजनक स्थान दिया, सारी घटना उन्होंने सुनी और देखा, आज ऐसा श्रेष्ठतम एक व्यक्ति आया पृथ्वी का और ऐसा अद्भुत बालक कुमार अवस्था में, तम कुमार संतम, बिल्कुल कुमार अवस्था में थे। उन्होंने कहा कि बेटे अब तुमको तो जाना पड़ेगा, हम तुमको यहां नहीं रख सकते हैं। क्यों? भले ही तुम्हारे पिता ने तुमको दान कर दिया है लेकिन मैं मृत्यु हूं और उसके जीवन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं जिसके यहां लाने का समय नहीं हुआ हो। मरने का समय यदि नहीं हुआ है तो आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आप कैसे मरेंगे। माने यम के भी हाथ में नहीं है कि आपके मृत्यु का समय न हो और उसको स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि मैं तुमको भेज दूंगा, तुम अपने पिता के यहां जाओगे लेकिन जाने के पहले मैं तुमको तीन वर दे दूं। तीन क्यों? तीन रात्रियां तुमने यहां निवास किया। और ये रात्रि शब्द जो है ना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें सविस्तर उस समय में कह चुका हूं। राति सुखम राति दुखम इति रात्रि, रात्रि जो है ना यही हमें सुख देती है। ये रात्रि शब्द का ही अर्थ होता है राति ददाति सुखम इति रात्रि। आप दिन में सुखी रहते हैं कि रात्रि में सुखी रहते हैं? आपको आराम कब मिलता है? दिन में आराम मिलता है कि रात में आराम मिलता है? दिन में कहां आराम है, दुनिया की सारी झंझटें। आज जैसे रात हो जाती है तो आपको आराम मिल जाता है इसलिए उसको रात्रि बोलते हैं। लेकिन आप रात्रि में खतरे में होते हैं कि दिन में खतरे में होते हैं? आप रात्रि में खतरे में होते हैं। आप दिन में दरवाजा कुंडी लगे कि न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप सो रहे हैं तो आप ज्यादा चौकीदार की जरूरत नहीं समझते हैं दिन में, लेकिन रात हो जाए तो आप फिर क्या देखेंगे? दरवाजा बंद करेंगे अच्छी तरह से, चौकीदार को आवाज लगा देंगे, भैया जग रहे हो? क्यों? रात्रि है, राति दुखम इति रात्रि ही, जो दुख देती है जो भय प्रदान करते हैं इसलिए उसको रात्रि बोलते हैं। इसलिए दिन की अपेक्षा रात महत्वपूर्ण है। माने किसी को आप दिन में प्रश्रय दो ये बड़ी बात नहीं है, रात में प्रश्रय दो ये बड़ी बात है। आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि दिन में आदमी भूखा रहा, आपको ज्यादा कष्ट होता है अरे रात में भूखा रहे। आज यही बात है, आचार्य यम के सामने यही प्रश्न है, ओहो रात के समय हमारे यहां तीन रात्रियां रहा इसलिए रातियां गिनाई उन्होंने, दिन नहीं गिनाए। उन्होंने कहा कि तीन वर मैं आपको दे देता हूं और बहुत सारी चीजें दे दूंगा, बहुत सारी चीजें दे भी दिया है, उल्लेख है बहुत सारी चीजें दे दी। अब बालक नचिकेता को नचिकेता सामान्य वही बालक थोड़ी रहा, अब उन्हें तो श्रेष्ठतम व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी मिले इन्हें और सारी चीजें मिल चुकी हैं इन्हें। अब इस पृथ्वी लोक का आचार्य बनेगा ये और ये महान यज्ञ का कर्ता, वैदिक कर्म का प्रस्तोता बनेगा आचार्य। ये कोई आप ये सामान्य घटना मत समझना है। आज नचिकेता का उल्लेख एक छोटी सी आख्यायिका में है कठोपनिषद में, इतने मात्र से आप ये मत सोचना कि इतना ही है। आज वो पृथ्वी मंडल पर संपूर्ण यज्ञ विज्ञान इनको दे करके भेजने वाले हैं। बहुत सारी चीजें दे दी और उन्होंने कहा कि तुम अब अपने मन से तीन बार मांग लो। अब इनके मांगने का जो क्रम है ना, ये क्रम और समय बहुत अद्भुत है। ये समय भी हमारे जीवन को निर्मित करता है, हमारे जीवन का संदेश देता है समय। आप किस समय क्या कर रहे हैं? बालक नचिकेता के जीवन में इसका बहुत बहुत संतुलन है, समय और मांगने का क्रम। बालक नचिकेता को पहले दूसरे तीसरे वर को मांगने के लिए जब बोला तो उन्होंने पहले वर में क्या मांगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण। बालक नचिकेता ने पहले वर को अपने पिता के लिए रखा, अपने परिवार को सामने रखा, पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले वर में अपने पिता के लिए मांगा। शांतः सुमनसा यथास्यात् वीतमन्युः गौतमो माभिप्रेत, मेरे पिताजी शांत हो जाए। बोले शांत से भी काम नहीं चलता है, वो शांति खो जाएगी। यदि मन आपका अच्छा नहीं है और आपको शांति भी मिल जाए तो शांति खो जाएगी। थोड़े समय के लिए शांति होगी और फिर जो मन है कुमन वो आपके मन को फिर अशांत कर देगा। इसलिए इन्होंने मांगा जो है ना, बोले शांत, बोले शांत हो जाए मेरे पिताजी का मन, लेकिन शांत हो जाए तो क्या भरोसा उसका, तो बोले सुमनसा, बोले वो सुमन हो जाए, सुमन सुमन हा? क्योंकि आपके मन में यदि सुविचार ना हो, आपके मन में सुविचार ही मन का सौम्यत्व है, मन की जो सुमनता है वो मन के कारण नहीं है, वो सुविचारों के कारण है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का मन सुमन हो जाए, और जब मन जब सुमन होगा तो फिर आपको शांति को पैदा करना पड़ेगा कि अपने आप शांति होगी। मन सुमन हो गया है, अब आपको मन को शांत करने के लिए अलग से उपायों की जरूरत नहीं है। आपको नींद क्यों नहीं आती है, आपको भी ध्यान देना, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आपके मन में कोई दुष्ट विचार पैदा हुए होंगे, कोई टेंशन पैदा हुआ होगा, कोई विक्षेप पैदा हुआ होगा, और उस समय आप कोशिश करते होंगे कि मैं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, आप सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए सोने के पहले आप बहुत अच्छी कोई पुस्तक पढ़ो, आप भगवद गीता पढ़ो, आप विवेकानंद जी को पढ़ो, पूज्य महाराज श्री को पढ़ो, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, आप आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका मन सुमन होगा, आपका मन विक्षेप रहित होगा, और आप टीवी देखो या इधर उधर की चीजें या राग द्वेष वाली चीजों को याद करो पढ़ो, और आपका मन विचलित कर देगा वो, और आप उस समय कितना भी सोने की कोशिश करोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद आती है सत्संग में, क्यों आती मालूम है, आप सत्संग में बैठने के बाद आपको नींद क्यों आती है, आपका मन सुमन हो गया है। आप सत्संग में आए, इतने दिव्य विचारों के लोग और ये अनुष्ठान है 7:30 से 8:30, कुछ भी हो जाए सत्संग चलता है, ये समय ये स्थान ये पवित्रता और लोगों की दिव्यता आपके मन को प्रभावित करती है, आप जाने अनजाने आपको पता भी नहीं, और आपका मन सुमन हो गया, उस देश ने उस काल ने आपके मन को पकड़ लिया, और अब आपका मन उतना विक्षिप्त नहीं है जितना घर में था, उतना नहीं रहा, और उस समय शांत होने लगे धीरे धीरे धीरे, और उस समय आपका मन नींद में चला गया। आपका मन जब शांत होता है ना, विक्षेप रहित होता है, तो वहां दो रास्ते खुलते हैं, एक तमोगुण का और दूसरा सत्वगुण का। आप जैसे निर्विचार होते हैं, जैसे जैसे आप निर्विचार होने लगते हैं, वैसे आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक सत्वगुण का। आपके सत्वगुण का रास्ता खुला, अलर्ट होंगे आप, बहुत शांति से आप सुनेंगे, सत्वगुण बढ़ेगा, और थोड़ी असावधानी रही तो दूसरा रास्ता तमोगुण का वो खुलेगा, लेकिन उसका मूल दोनों के प्रति एक ही है, निर्विचारिता, विक्षेप शून्यता। अब आपके विक्षेपों के ऊपर नियंत्रण हो गया, थोड़े समय के लिए देश और काल की परिस्थिति ने आपके मन को सुमन बना दिया। अब जो आदमी घर में भी नहीं सो सकता है वो यहां के सो जाता है, आराम से सो जाता है। अपने वृंदावन अखंडानंद आश्रम में एक व्यक्ति आता है, डेली का प्रतिदिन नियमित श्रोता है, जैसे प्रवचन में आते हैं मंगलाचरण भी पूरा नहीं कर पाते हम, और वो सो जाता है, और वो ऐसा सोता है कि उसकी खराटे हमको सुनाई देती है, और सबको मालूम है सोता है, अब कब तक कौन जगाएगा, अब जगाना भी बंद, अब मालूम है कि सो गया है। अब उनकी पत्नी बोलती है इनको घर में नींद नहीं आती, और पता नहीं क्या होता है कि यहां सो जाते हैं। अब वहां पर बैठते ही वहां की जो आध्यात्मिकता उनकी मन को छू गई, उन्होंने उस आध्यात्मिकता को पकड़ लिया, मन थोड़े समय के लिए सुमन हो गया, विक्षेप रहित हो गया, और उस समय नींद में चला जाता है आदमी। इसीलिए सुमन हो जाए वही नींद के लिए श्रेष्ठ, शांति के लिए श्रेष्ठ अवसर है, अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं। इसलिए नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता का मन सुमन हो जाए, और उनको ये भी तो मालूम था, बेटे ने कहा कस्मे मामदास जी, तो उस बात को हल्के ढंग से ले लेते हैं, और बालक नचिकेता को समझा भी तो देते, बेटा ठीक कह रहे हो, मैं ये गाय दान नहीं दे दूंगा, मैं अच्छी अच्छी गायों को दान दूंगा। लेकिन क्रोध किया था उन्होंने, शायद लगता है कि ज्यादा क्रोधी होंगे। अपने बच्चों को जिन्होंने कहा कि मृत्यु को दान देता हूं, तो इसी से सिद्ध होता है कि थोड़े वो क्रोधी भी रहे होंगे। और क्रोधी आदमी को नींद कहां से आएगी, क्योंकि क्रोध ही अपने आप में अनिष्ट का मूल है। इसलिए इन्होंने कहा सुमना सुमनो यथा स्यात्, और ये यथा शब्द का भी प्रयोग किया, बोले उपाय मन सुमन हो जाए। लेकिन बोले यथास्यात यथास्यात, अरे भाई जैसे बना लो। हाँ बोलते हैं ना कि भैया ये कैसे भी करो लेकिन ये फाइल निपटाओ, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। सामने वाला बोलता है कि भैया ये नहीं होगा, अरे बोले नहीं कैसे भी कर लो लेकिन ये जैसे तैसे इसको, बोले यथास्यात। ये संस्कृत का भाव बड़ा, संस्कृत भाषा बड़ी अद्भुत है। आप मूल श्लोकों को पकड़ते हैं बहुत अद्भुत भाव निकलते हैं। बोले मेरे पिताजी का मन सुमन हो यथास्यात, माने जैसे जिन उपायों से हो आपकी कृपा, भगवत कृपा कैसे भी हो लेकिन यथास्यात सुमनो यथास्यात। और सुमन हो गए वीतमन्यु, ये वही बात, क्रोध से रहित हो जाए। और एक बहुत अद्भुत बात बोली उन्होंने, कितने भविष्य की बात को भी समझने वाले हैं। उन्होंने बोल तो दिया था कि मैं आपको घर पिताजी के पास भेज दूंगा, खुश हो गए होते हाँ, और बोलते ठीक है आप हमको भेज रहे हैं तो हम माता पिता के पास चले जाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो मर चुका हूं, मृतवीर त्वाम ददामिति, और संकल्प शक्ति के द्वारा वो तो शरीर छोड़ दिए हैं और शरीर तो पड़ा हुआ पिता के सामने। और मुझे लगता है कि आज तीसरा दिन है, वित्तमन्यु तीन रात्रियां पूरी हुई, चौथी रात आने वाली है, और वो जो शरीर पड़ा हुआ बालक नचिकेता का अब होगा कि नहीं, वहां कि उसका अंत्येष्टि संस्कार हो गया होगा। आज तीन रात्रियां बीत चुकी हैं, आज चौथी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, और बालक नचिकेता क्या अब वहां होंगे, क्या उनका शरीर वहां होगा? अब वो तो अंत्येष्टि संस्कार हो गया है। और बालक नचिकेता को आचार्य यम कह रहे कि तुमको मैं भेजूंगा। अब बालक नचिकेता सोचने लगे कि इन्होंने मुझे भेज भी दिया तो मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे कि नहीं। मान लो कि किसी आदमी के अपने अंत्येष्टि संस्कार करके घर लाके बैठ गए हैं, हाँ, और जैसे आप घर में बैठे और उधर से आपके पास फोन आया, बोले मैं आ रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? मत आओ। तीन दिन बीते, अंत्येष्टि संस्कार किसी का हो गया है और वो आपके घर में यदि आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वागत करोगे, नहीं करोगे। आप उस समय पहचानोगे नहीं कि वही है, आप बोलोगे तो भूत हैं, प्रेत हैं। आज बालक नचिकेता का कितना गहरा तार्किक दिमाग है। आज बालक नचिकेता सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे कि नहीं, वही मेरा बेटा है और वही मेरा बेटा वापस आया, वो पहचानेंगे कि नहीं। तो ऐसा ना हो कि भूत प्रेत समझ के मेरी उपेक्षा कर दे, फिर आपके द्वारा भेजने का फायदा क्या होगा? फिर आर्य श्लोक में उन्होंने बोला त्वत् प्रसृष्टम, बोले तुम्हारे द्वारा भेजा गया मैं, माम अभिवदेत, वो मेरे से बात करे, माम अभिवदेत, इसके दोनों अर्थ हैं। और प्रतीत, उनको मालूम पड़ जाए कि यही मेरा बेटा है, ये भूत प्रेत नहीं है, ये वही मेरा बेटा है, ये भी काम करो। उनके दिमाग में ये भी भर देना कि मैं वही हूं और वही यम के द्वारा भेजा गया हूं, मरने के बाद भी अपने संकल्प शक्ति के द्वारा नया शरीर देकर और उन्हीं उसी को वापस भेज दिया। ये पहले वर में उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया, पिता की शांति मांग ली, सुमन मांगा, क्रोधादि विकारों पर विजय मांगी, और उसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे पहचान ले। और वास्तविकता तो यही है, पहचानेंगे तभी तो शांत संकल्प सुमनसा, ये आपका वर चरितार्थ होगा। और यदि वहां गया और वो भूत प्रेत मुझे समझ ले तो फिर उनका मन अशांत होगा ना, फिर वो सोचेंगे कि ये तो मर गया और ये भूत प्रेत बन गया। बोले नहीं, आपके वर के अंदर है शांत सुमनसा यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माम अभिवतेत प्रतीत एतत्त्रयानाम प्रथमम वरणम। ये मैं तीन वरों में पहला वर मैं मांगता हूं, ये अपने परिवार के लिए। प्रथम जो कर्तव्य बालक नचिकेता ने निभाया वो अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का मूल है। माता पिता जो भी अपने परिवार के लोग हैं, पहला कर्तव्य उन्होंने अपने पिता के लिए। और भी उन्होंने बोला यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत है ना, ये बालक ने श्री पिता की बात सुनी, ओहो बड़ा बुद्धिमान बालक, ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी। आज मानो आचार्य यम कहने लगे कि अरे ये तो मेरे भी दिमाग में बात नहीं थी कि तुमको मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेजूंगा तो वो तुमको पहचानेंगे कि नहीं, ये मेरे भी दिमाग में बात नहीं थी। इसलिए बोले पुरस्तात भविता प्रतीत, पुरस्तात भविता, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया। पुरस्तात जैसे पहले, जैसे पहले वैसे ही पूर्व भविता आगे भी, भेजने के बाद भी जैसे पहले तुमको समझते थे वैसे ही बाद में भी तुमको पहचानेंगे। और ये भविता शब्द का प्रयोग किया है, सुदूर भविष्य के अर्थ में है। ये जो भविष्य भविता शब्द है ना, भविता भवितार और भवितार ऐसे रूप बनते हैं इसके, माने बहुत लंबे समय तक, माने अंतिम समय तक तुमको यही समझेंगे कि ये मेरा ही बेटा है। माने बीच में भी कहीं उनको संदेह पैदा नहीं होगा, मतलब कहीं बीच में भी कभी कालांतर में आप भी तो पहचान लिया, अचानक बाद में दिमाग में आ गया अरे ये तो मर गया था, ये कहा से। बोले नहीं नहीं भविता, और बहुत सारे बीच में भी और भी उन्होंने दिए। उसके बाद फिर बीच वाला जो वर है उन्होंने समाज के लिए, और तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा। ये 12वां श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, हम लोग क्रमशः इसको चलेंगे। इसका तीसरा वर और तीसरे वर के बाद जो तत्व ज्ञान, दूसरे वर्ग के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, यहां एक दो श्लोक में पूरी की है। अब आप लोग सीधे बैठ जाएं और हम लोग दो माला जप करेंगे प्रतिदिन प्रवचन के बाद। हम लोग थोड़ा घर में जाके हम तो जप नहीं कर पाएंगे है ना, तो यही थोड़ा सा साधनात्मक रूप मैं आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे अपने मन को समाहित करके। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।